0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: പ്രകാശധാര, ആരോഗ്യരംഗത്തെ വിദഗ്ധർ സംസാരിക്കുന്നു. എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് 12:40. മറക്കാതെ കേൾക്കുക പ്രകാശധാര.
3: ഇനി കേൾപ്പിക്കുന്നത് അഭിജിത്ത് വിജയൻ പാടിയ ഗാനം, ചിത്രം ആകാശമിഠായി. രചന റഫീഖ് അഹമ്മദ്, സംഗീതം മൻസൂർ അഹമ്മദ്.

हाय दोस्तों, स्वागत है आपका लम्हे प्रोग्राम में और मैं हूँ आपका आरजे चेतन। आसपास के वातावरण साफ सुथरा हो तो किसे अच्छा नहीं लगता है, और इसमें नगर निगम और स्वच्छता कर्मी का बहुत बड़ा योगदान रहता है। वो तो अपने तरफ से पूरा योगदान देते हैं, परंतु इसके बावजूद कुछ लोग गंदगी और कचरा करने से बाज नहीं आते। वो भी इंसान ही है, आखिर कितना साफ करेंगे। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने आसपास को साफ रखने की जिम्मेदारी स्वयं ही करना है, ताकि साफ सफाई से हम स्वस्थ रहे और हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहे। आसपास की रखो सफाई, इसमें हम सबकी भलाई। स्वच्छ रखेंगे वातावरण, स्वस्थ रहेंगे हम हर पल हर क्षण। घर को हर दिन करें सफाई। हमें हमारे घर के हर रोज सफाई करना चाहिए। वह कचरा इकट्ठा नहीं होना देना चाहिए, इससे कीटाणु पनपते हैं और बीमारियां फैलती है। घर में कुछ ऐसे कोने होते हैं जिसे नियमित रूप से सफाई करना चाहिए, जैसे रसोई घर। रसोई घर जहां हमारा भोजन इत्यादि बनता है, उसकी सफाई नियमित होना चाहिए। बर्तन को अच्छी तरह से साफ रखना चाहिए। गैस स्टैंड बर्तन रखने की जगह सभी जगह साफ करना चाहिए। रोज किचन की झाड़ू लगाना चाहिए, ताकि खाने के साथ हम कोई गंदगी अपने खाने में आने न दे, और साफ सुथरा भोजन ही खाए, साफ सुथरा किचन रखे। नियमित पोंछा और धोने जैसे सामान को धोए, बाथरूम को रोज साफ करे, दीवारें साफ करे, कुछ अच्छे से एंटीमाइक्रोबियल यूज करके साफ करे तो और भी अच्छा है। जहाँ हम हमारी गाड़ी रखते हैं, वहाँ रोज झाड़ू लगाए और बगीचे में सफाई रखे हो। कोई भी कचरा और प्रयोग में न आने वाले सामान को इकट्ठा न होने दे। यदि हम हमारे किचन, बाथरूम और पूरे घर में साफ सफाई नहीं रखेंगे, तो चचुंडर, कॉकरोच, मक्खी, चीटियां, मच्छर आदि पनपते हैं। और साफ सफाई में अगर हम लापरवाही बरतते हैं, बर्तन और अन्य सामानों के साथ ये गंदगी हमारे मुंह में जाते हैं, जिससे हमें कई तरह की बीमारियां पकड़ लेते हैं। यदि मच्छर पनपते हैं तो मलेरिया, कॉलरा, निमोनिया, पीलिया या सब बीमारी होती है जो कि गंदगी की वजह से फैलती है। इसीलिए हमें हमारा घर और आंगन की सफाई पर नियमित ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पूरे घर पर नियमित झाड़ू और पोंछा लगाना चाहिए। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट feedbackamc1@gmail.com। धूल इत्यादि को पहुंचने और बगीचे में कहीं भी पानी नहीं होने देना चाहिए। किसी भी तरह की गंदगी बीमारी का लक्षण होता है, इसीलिए बचना चाहिए और नियमित साफ सफाई करना चाहिए। कुछ लोगों का सोचना है कि जहां गरीब व्यक्ति रहते हैं वही ज्यादा गंदगी होती है, परंतु ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि गरीबी और साफ सफाई का दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। गरीबी तो इंसान की मजबूरी है, परंतु सफाई तो उसकी जिम्मेदारी है। इसके लिए अमीर या गरीब मायने नहीं रखता, और घर की साफ सफाई में सबकी बराबरी से हाथ बांटने की मंशा होनी चाहिए। केवल घर के बड़े, जिसमें माँ होती है, माँ घर के हर काम को करती है, तो क्या ये घर केवल माँ का होता है? उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का नहीं होता है। इसीलिए सभी सदस्यों को मिलजुल कर इसकी जिम्मेदारी उठाना चाहिए, और यह सोच परिवार के हर सदस्य के नजरिए पर निर्भर करता है। बचपन से ही बच्चों की देखभाल माता पिता और घर के अन्य सदस्य करते हैं, लेकिन बच्चे जब थोड़े बड़े होने लगते हैं तो उन्हें आपको सिखाना होगा कि साफ सफाई रखना जरूरी है। बचपन से ही उसे अपनी सफाई की शिक्षा दे, साथ ही उसे अपने आसपास की जगह को साफ रखना सिखाए। उसे बताए कि अगर साफ सफाई नहीं रखी जाएगी तो बीमारी होगी, और बीमारी होगा तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। इसीलिए उसे बताए कि अपनी साफ सफाई रखे और अपने आसपास की जगह को भी साफ रखे। साफ सफाई में अपने बड़ों की मदद करे, इससे वह भी साफ सफाई करना सीखेगा और स्वस्थ रहेंगे। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट
09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com। साफ सफाई इंसान की फितरत होती है। वह अपने घर के आसपास तो साफ रखते हैं, परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं घर ही को अपना समझते और अपने घर के बाहर झूठा और जो भी कचरा होता है उठाकर बाहर फेंक देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि उनकी जिम्मेदारी केवल घर के अंदर तक ही सीमित है। इसीलिए अपना फर्ज भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि सड़क, अपने घर का बगीचा साफ रखना उनकी जिम्मेदारी है। सड़क से ही गंदगी हमारे घर तक आती है और इसके साथ ही कई तरह की बीमारियां भी लेकर आती है। इसीलिए स्वयं साफ सफाई रखें और जो कर्मचारी और नगर निगम की गाड़ियां आती है उसमें अपने घर को साफ रखकर उन्हें अपना पूरा योगदान प्रदान करें। इस प्रकार हम हमारे घर के और आसपास की सफाई, हमारे स्वास्थ्य के साथ ही वातावरण को भी साफ रखते हैं और इसका प्रथम पाठ हम हमारे घर से ही मिलता है। यदि हम हमारे घर को और हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखेंगे तो धीरे धीरे शहर और शहर देश सभी जगह सफाई दिखने लगेगा। प्रदूषण में जमा हमारे देश की गिनती निचले स्तर पर की जाती है, वही हमें आगे और आगे प्रथम स्थान पर लाना होगा और इसकी शुरुआत हमें हमारे आसपास के वातावरण से शुरू करना होगा। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है। क्या इसमें नागरिकों की कोई भूमिका नहीं है? हमें इस मानसिकता को बदलना होगा। विद दिस लवली कोट, दिस इज चेतन साइनिंग ऑफ फॉर टुडे इन लम्हे प्रोग्राम। आई विल गेट बैक टू यू इन आवर नेक्स्ट प्रोग्राम। टिल देन हैव अ ग्रेट टाइम, बाय। दोस्तों, आपके सुझाव, सलाह और फीडबैक के लिए आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। हमारा ईमेल आईडी है feedbackamc1@gmail.com।

हसन कमाल के बोलते फिल्म का नाम था एतबार। आशा भोसले और भूपिंदर की आवाजें थी। अब आहिस्ता आहिस्ता और सितारा फिल्मों के गाने।

0: भूपिंदर सिंह की आवाज थी। फिल्म का नाम था सत्या। 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: ओ तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास। एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
1: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
2: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
0: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: क्या किया? पास से शुरू करना था ना, और तुमने कहाँ से किया? नी से?
1: अच्छा बाबा, लो पास से शुरू करती हूँ।

0: मैटिनी शो कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज मैटिनी शो में हमारे साथ एक बहुत जरूरी मेहमान हैं शुभजीत मुखर्जी। बहुत बहुत स्वागत आपका।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: आपकी जो टी शर्ट है उस पर लिखा है जल है तो कल है। अब चूंकि हम रेडियो में बैठे हैं तो मुझे एक दृश्य खींचना होगा ना कि लोगों को पता चले। और आप पानी की दुनिया में काम कर रहे हैं, पर्यावरण की दुनिया में काम कर रहे हैं, मुझे ये बताइए कि ये जो बारिश के दिन हैं इनमें सबसे जरूरी गतिविधि क्या है?
1: देखिए, बारिश भगवान का आशीर्वाद होता है।
0: क्या प्यारी बात बोली आपने।
1: चाहे आप कुछ भी दुनिया का एक्टिविटी हो, कोई भी, रोटी कपड़ा मकान से भी पहले पानी आता है। आप बिना रोटी के थोड़ा समय तक रह सकते हैं, बिना कपड़े के तो आराम से रह सकते हैं, बिना मकान के रह सकते हैं, बिना पानी के 4 घंटा नहीं रह सकते। तो इसलिए कोई घर में आता है, दुश्मन भी हो, पानी हम जरूर पूछते हैं।
0: बिल्कुल,
1: खाने के बारे में नहीं बात करते हैं। तो सबसे पहले पानी है। जो भी गतिविधियां हैं दुनिया में, जो भी हम काम कर रहे हैं, बहुत जरूरी है कि पानी को एक विशेषता दिया जाए, पानी के बारे में चर्चा हो और हर इंसान को पता हो कि पानी प्रथम है, पहला टॉपिक शुड बी वाटर। तो इसलिए इस पे काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं भी जो लाइफ लॉन्ग काम कर रहा था, मैं ये रियलाइज किया हूं कि हर चीज पानी से जुड़ा हुआ है। और क्योंकि पानी नहीं था इसलिए मेरा काम ठीक से नहीं हो रहा था। और जहां जहां पानी है वहां हर काम अच्छे से होता है। हर इंडस्ट्री, हर फैक्ट्री, हर सर्विसेज पानी के बिना नहीं होगा। टेक्नोलॉजी की बात कीजिए, आप खेती की बात कीजिए, किसी भी इंडस्ट्री की बात कीजिए, उसको कहते हैं वाटर फुटप्रिंट। बिना पानी का कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। तो इसलिए पानी को लेकर मैं काम कर रहा हूं, जिसमें बहुत अच्छा लग रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। एंड बहुत बहुत धन्यवाद हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जिन्होंने जल जीवन मिशन शुरू किया है। उनका जो सोच है जल संचय जन भागीदारी, इससे लोगों को ये चीज समझ में आया है कि नहीं, ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, लोग इससे जुड़ रहे हैं और अपने अपने तरीके से, अपने अपने जरूरत के हिसाब से पानी के ऊपर काम कर रहे हैं। ताकि आज तक लोगों को लगता था कि गलतियां किसी और की है, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है जो हमें निभाना ही पड़ेगा।
0: वाह, बहुत ही जरूरी बात आपने बोली है, जो जनता की भागीदारी की बात बोली। मुझे बताइए कि ये जो फील्ड है, ये जो मुहिम है, ये आप

0: ने कब शुरू की, इसका कारण क्या था और इसकी उपलब्धियां क्या हैं?
1: ये कब शुरू की थी बोलूंगा तो आपको थोड़ा अजीब लगेगा। मेरा मेन पैशन था कि पेड़ लगाऊंगा।
0: अच्छा।
1: एंड 2010 से मैं बहुत पेड़ लगाया एंड गिनते गिनते एक बार पहुंच गए कि 80,000 पेड़ लग गए
0: क्या
1: 5 सालों में
0: जी।
1: लेकिन 5 सालों में 2010 से शुरू किया था 2015 तक 80,000 पेड़, कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है कि कोई बोले कि वाकई यहां तो लोग करोड़ों पेड़ लगा रहे हैं, बट उस 80,000 में से 40,000 पेड़ ऐसे ही मर गए। मैं जब गिनना शुरू किया पता चला पेड़ में, क्योंकि पानी नहीं मिला उसको, या तो कभी सूखा पड़ जाता है या ज्यादा पानी आ जाता है, पेड़ मर जा रहे हैं। अब एक पेड़ में ज्यादा पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा, कम पानी गिरेगा तो भी मर जाएगा। तो मैंने ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं पेड़ लगाना चाहता हूं तो हमें पानी का पहले बंदोबस्त करना ही पड़ेगा।
0: जी जी।
1: चाहे एक किसान हो, जो भी हो, जो भी पेड़ रिलेटेड काम करता हो, चाहे वो एक चावल ग्रो कर रहा हो या शुगर ग्रो कर रहा हो या फल ग्रो कर रहा हो, कुछ भी, पानी बहुत जरूरी है। चाहे हम जैसे लोग पर्यावरण प्रेमी लोग जो पेड़ पौधे लगा रहे हैं, आज जैसे जो बहुत इम्पोर्टेंट कैंपेन है एक पेड़ माँ के नाम, तो तब मेरे सोच में आया कि हमें पेड़ लगाने से काम नहीं होगा, हमें पानी लगाना पड़ेगा।
0: वाह।
1: तो ट्री प्लांटेशन मत कीजिए, मैं लोगों को बोलता हूँ आप वाटर प्लांटेशन कीजिए। आप ये सोचिए कि पानी कैसे होगा, क्योंकि बारिश के समय हर जगह हरा भरा हो जाता है अपने आप, क्योंकि पानी रहता है। वाटर इज ब्लेसिंग्स एंड हमारा ही एक पृथ्वी ऐसा जगह है जहां पानी है, इसलिए हम है यहाँ पे। आज अगर चांद पे पानी होता तो मैं गारंटी देता हूं कि आज पर अभी समय हम लोग चांद पे बैठ के बात कर रहे होते, पृथ्वी में नहीं बैठे होते। तो पानी यही है और हमें यहीं पे पानी का संरक्षण, सबसे ज्यादा परम संरक्षण पानी का ही संरक्षण है इस समय।
0: तो ये तो तय हुआ कि आपने कैसे शुरू किया
1: जी,
0: कब शुरू किया और उपलब्धियां क्या है इसकी?
1: उपलब्धियां तो हो गई है, मेरी उपलब्धि नहीं है, लोगों की उपलब्धि है। शुरुआत 2015 से हुआ जब मैंने एक सोच निकाला कि पानी व्यर्थ बहुत जाता है।
0: जी जी।
1: चाहे शहर हो या गांव हो, हम सब नहाते हैं। एंड मौका मिला बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलने का, मौका मिला बहुत साइंटिस्ट से बात करने का, थैंक यू IITs एंड काफी रिसर्चर्स थे। तो ये पता चला कि घरों में जो पानी होता है, किसी को बोलूं पीने का पानी को आप पेड़ में डालिए तो लोगों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि पीने का ही पानी नहीं है तो पेड़ को कैसे देंगे, क्योंकि यही बात अक्सर होती थी।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: तब माइंड में आया कि दहाने का पानी तो व्यर्थ जा रहा है और घर में जितने भी पानी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, 40% पानी नहाने में चला जाता है एंड 30% पानी फ्लशिंग में चला जाता है टॉयलेट्स में। टॉयलेट का पानी रीयूज करने के लिए बहुत मेहनत है, बहुत खर्चा है, बट नहाने का पानी एक ऐसा पानी है जिसको हम आराम से फिल्टर करके रीयूज कर सकते हैं, चाहे आपको फ्लशिंग में यूज करना हो या पेड़ पौधे में देना हो या टॉयलेट धोना हो या बहुत सारे, इसको हम लोग टेक्निकली कहते हैं नॉन ड्रिंकिंग पर्पस। तो इस चीज को लेकर मैंने एक जल तारा इन्वेंट किया, डिजाइन किया एंड थैंक यू उसमें एक पेटेंट भी मिला मुझे। एंड पता चला कि पेटेंट करना बेटर है, नहीं तो कोई दूसरा उसको कॉपी करेगा और उसका पैसा लगा देगा। तो मैंने ऐसा एक डिजाइन बनाया है कि आप कोई कॉपी नहीं कर सकता और ये फ्री फॉर ऑल है।
0: अच्छा,
1: ये हर इंसान अपना नहाने का पानी उसमें डाइवर्ट कीजिए, उसमें फिल्टर कीजिए और तुरंत इस्तेमाल कीजिए, उसको नॉन स्टॉप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आप नहा रहे हैं तो मतलब आपके पास एक्स्ट्रा पानी है। हर इंसान को एवरेज कम से कम 30 लीटर पानी चाहिए और कोई अगर शावर से नहा रहा हो तो डबल हो जाता है, 80 लीटर से 100 लीटर पानी इस्तेमाल हो जाता है। तो इसीलिए मैं लोगों को बताना लगा कि आप ये कार्य करना शुरू कीजिए। मैजिक ड्रम इसको इनिशियली कहते थे, फिर धीरे धीरे इसका नाम पड़ गया जल तारा, क्योंकि हम ये घर का पानी इसमें डाइवर्ट करने लगे एंड नॉन स्टॉप ये पानी इस्तेमाल करने लगे। लोगों को बहुत अच्छा लगा एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। किरण बेदी जी हैं जो बहुत ही वेल नोन फिगर हैं, तो उनको ये आइडिया अच्छा लगा था, उन्होंने देखा था। एंड कई सालों बाद जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कि हमें जल संचय करना है, जन भागीदारी जरूरी है, जल जीवन मिशन जब शुरू हुआ, तो उन्होंने, किरण बेदी मैडम ने इस कॉन्सेप्ट को जल शक्ति मंत्रालय को ट्वीट करके बताया
0: जी।
1: ये देखिए, ये मुखर्जी हैं, ये बहुत बढ़िया एक आविष्कार किए हुए हैं, आप लोग ये लोगों तक पहुंचाइए। वो एक दिन है, और जब प्रधानमंत्री जी ने इस बारे में बताया, मुझे जल शक्ति मंत्रालय बुलाया गया, उन्होंने ये सिस्टम देखा, उन्होंने इस बारे में बहुत सारे पोस्टर्स और उन्होंने चारों तरफ लोगों को बताना शुरू किया कि ऐसा करो, क्योंकि सोच यही है कि एक अगर हम चाहते हैं कि आज अगर देखा जाए तो 150 करोड़ आबादी में मान के चलता हूं हमारे देश का,

0: हर इंसान को जोड़ना हो तो तीन पॉइंट बहुत जरूरी होता है। एक है कोई भी कार्य इजी होना चाहिए, आसान होना चाहिए लोगों के लिए। दूसरा, कार्य सस्ता होना चाहिए, मैं बोलूंगा लाखों रुपए खर्चा होगा लोगों को पसंद नहीं आएगा। एंड तीसरा, क्विक होना चाहिए। मैं ऐसा कुछ काम बोलूंगा कि दो महीना चले काम ही चल रहा है, बढ़िया बिल्डिंग बन रहा है, फैक्ट्री बन रहा है, कुछ ऐसा इक्विपमेंट बन रहा है, तो लोग उसमें लोग जुड़ेंगे नहीं। एंड उसी समय स्वच्छ भारत अभियान, तो लोग उससे भी एक प्रेरणा मिला कि जब करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं, तो मैंने सोचा मैं भी एक ऐसा काम करूंगा जिसमें हर इंसान अपने हिस्से का पानी बचाना शुरू कर दे। तो इसीलिए ये गैजेट टेक्निक बनाया गया, जल तारा, जिसमें लोग जुड़ने लगे, अपने तरीके से खुद ही इसको इंस्टॉल करने लगे। एंड देखा जाए तो इसमें कोई भी खर्चा नहीं है किसी का। यही है कि जैसे मैं थोड़ा आलसी इंसान हूं, मैं खुद तो काम करूंगा नहीं, तो मैं सोचता हूं कि कोई खड्डा बना दे तो कोई लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, पत्थर चुन के लाऊंगा नहीं, भाई कोई पत्थर चुन के ला दो, तो मेटीरियल लेके आओ। एंड उसको इम्प्रोवाइज करते करते आज ऐसा एक डिवाइस बना दिए हैं कि आप खुद ही बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी और से करवा लीजिए। एक अच्छा स्टैंडर्ड करना है तो 5,000 में काम हो जाता है, लेकिन जहां लाखों किसान आज हमसे जुड़े हुए हैं वो खुद ही कर रहे हैं, वो बस हमसे एडवाइस लेते हैं, मैं उनको सिखाता हूं। हमने कॉल सेंटर शुरू किया है, RWH इंडिया हेल्पलाइन, जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको फोटो वीडियो के साथ इतना सारा भेज देता हूं कि आज मुझे बोलने में बहुत अच्छा लग रहा है कि 5 करोड़ से ज्यादा लोग इन वीडियोज और फोटोज को देख चुके हैं, सोशल मीडिया में भी बहुत जगह डाले हैं, उन लोग भी इससे देखते रहते हैं, सवाल करते रहते हैं, डेली 300 से 400 लोग हमें ईमेल कर रहे हैं या कॉल कर रहे हैं एंड कमेंट्स कर रहे हैं, जिसको हम लोग नॉन स्टॉप गाइड कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत यूजफुल हो गया है हम सबके लिए एंड सब लोग जुड़े हैं, यही हमारे लिए एक खुशकिस्मती की बात है।
1: जी, आपने हेल्पलाइन की बात की तो मैं ये चाहता हूं कि आप अपनी हेल्पलाइन का नंबर या कॉन्टेक्ट का जरिया बताएं, ताकि जिन लोगों की जलतारा में दिलचस्पी है वो इस बारे में पूछताछ कर सकें और नजदीकी लोगों से जुड़ सकें। ये तो हुई एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मन से आपकी इस मुहिम के साथ जुड़कर काम करना चाहे तो उसका क्या तरीका है? इन दोनों सवालों के जवाब दीजिए।
0: जी, पहला तो ये है RWH इंडिया हेल्पलाइन, जो एकदम ही फ्री सेवा है, जिसके लिए हम लोग कोई पैसा नहीं लेते। हम लोग 8 जन हैं जो जियोलॉजिस्ट हैं एंड जो सिविल इंजीनियर्स हैं, जियोलॉजिस्ट एंड सिविल इंजीनियर्स, वो भी अपने तरफ से देश का सेवा कर रहे हैं। एंड कोई भी हमें ईमेल करता है, हम लोग पहले समझते हैं कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, आपके भौग जमीन का क्या सिचुएशन है, आपका टेरेन कैसा है, आपके यहाँ पानी कितना बरसता है, आपका जमीन का साइज कितना है, छत कितना है और पानी का उपयोग कितना है, यही सब चीजें हम लोग उनको बोलते हैं ईमेल कीजिए हमें। waterheroofindia@gmail.com एक मेल बनाया है जिसमें लोग ईमेल करते हैं, उनको हम लोग रेस्पॉन्ड देते हैं हमारे इंजीनियर्स बैठ के, और उनको पूरा डिजाइन डायग्राम के साथ सिखा देते हैं कि आप लोग ये स्टेप कीजिए और आपका काम हो जाएगा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं होगा। एडिशनली अगर आपके पास फंड्स हैं, चाहे 1,000 रुपए हो, 2,000 हो, 3,000 हो, क्योंकि हमारा कोई भी काम 2-3,000 रुपए से ज्यादा के खर्चे का नहीं है, क्योंकि पहले जमाने में जब भी हम जल संचय की बात करते हैं या वाटर कंजर्वेशन की बात करते हैं, हजारों के लाखों में बिल जाता था। अब जब आप कोई बात बोल रहा है कि ये तो 2 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ 2 लाख छोड़ दो, 2,000 में हो जाएगा। कोई बोलता है 3 लाख खर्चा होगा, मैं बोलता हूँ भाई 3,000 में हो जाएगा। तो लोगों को फिर ये बात समझ में आने लगी। एंड जब लोगों को कॉन्सेप्ट में क्लियर करना शुरू किया कि जल संचय का क्या कॉन्सेप्ट होता है, वाटर कंजर्वेशन का क्या कॉन्सेप्ट होता है, लोगों को क्लैरिटी, जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया एंड लोग खुद ही करना शुरू कर दिए। पहला तो ये है। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट जो हमारे पूरे देश में एक कैंपेन चल रहा है, कई ऐसे न्यूज आए हमारे पास, न्यूज ये आए कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को पैसा देती है कि आप लोग जल संचय कीजिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए काम कीजिए, लेकिन वो पैसा यूज नहीं हो पाता है, वो वापस चला जाता है। बड़ी बड़ी कंपनियां पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है अंडर CSR, लेकिन वो फंड यूटिलाइज नहीं हो पाता है, वो वापिस चला जाता है। बहुत NGOs हैं हमारे देश में जो इस सब्जेक्ट को लेकर काम करना चाहते हैं, वो वापिस चला जाता है, उन लोग कुछ कर नहीं पाते क्योंकि स्किल नहीं है लोगों में, क्या करना है ये नहीं पता। प्रॉब्लम स्टेटमेंट सब जानते हैं कि हमारे पास पानी की कमी है, या दूसरा प्रॉब्लम स्टेटमेंट होता है पानी बहुत ज्यादा है, हम लोग डूब जा रहे हैं, यही दो प्रॉब्लम है, बीच का कुछ नहीं है। और सबसे अजीब बात क्या है, वही सेम गांव में पानी की कमी होती है और सेम गांव बारिश में डूब जाता है। तो सेम जगह में आप कोई भी न्यूज़पेपर उठा के देखिए, जून महीने में यहां इस शहर में पानी खत्म हो चुका है, लोग टैंकर से पानी से

0: जीवित हैं, इतने लोग अस्पताल पहुंच गए हैं, पानी नहीं है, अभी गांव छोड़ के जाना पड़ेगा, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। और ठीक 15 दिन बाद आप 15 जुलाई में आ जाइए और आप पूछिए कि क्या हालत है, बोले कि ये सेम गांव सेम आदमी पानी में डूब चुका है, उसको एक नौका ले आके बचा रहे हैं, अभी सारा घर भी डूब गया है। मतलब पानी की कमी नहीं है, पानी का मैनेजमेंट की गड़बड़ी है।
1: बिल्कुल
0: तो इसी को माइंड में रखते हुए हम लोगों ने जो RWH इंडिया हेल्पलाइन का एक और बहुत इम्पोर्टेंट है कि स्किल डेवलपमेंट जो इंडिया का जो कैंपेन चल रहा है, इससे प्रेरणा लेके हमारी कोशिश यह है कि हर इंसान को इसके ऊपर स्किल ट्रेनिंग दिया जाए। 7,400 लोगों को हमने ऑलरेडी ट्रेन किया है, हर गांव में हर शहर में। कोई भी सीखना चाहता हो कि जल संचय कैसे करें और जल संचय का सर्विस कैसे प्रोवाइड किया जाए, ताकि एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं भी है, क्लास 8 भी पढ़ा हो, क्लास 5 भी पढ़ा हो, उसको हम लोग सिखा रहे हैं कि आप जल संचय कैसे कर सकते हैं अपने गांव में अपने शहर में। आप लोगों को जाइए, बात कीजिए और आप खुद करके आइए। लोगों को एक तो आप सेवा तो दे ही रहे हैं, आपको कमाने का भी अवसर मिलता है। तो स्किल डेवलपमेंट का जैसे सोच है कि हम लोग ऐसे स्किल्स डेवलप करें जो हमारे देश में जरूरत है। अब जहां हमारे देश में जो सबसे बड़ी जरूरत है, जो हमें लगता है, वो पानी की बचत, पानी को लेकर संचय करना, पानी का कैसे मैनेजमेंट करना, इसमें अगर स्किल डेवलपमेंट और क्लासेस हो सकें तो बहुत अच्छा लगेगा। तो थैंक यू गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, उन्होंने भी मुझे एक जगह दिया है PWD के हेल्प से। हेल्थ डिपार्टमेंट ने मलाड वेस्ट मुंबई में 7 एकड़ का जमीन उन्होंने अलॉट किया है, एक हॉस्पिटल प्रमाइसेस हैं। देश भर से कम 300-400 लोग हर महीने आते हैं मुझसे मिलने, जल संचय के अलग अलग विधि समझने के लिए। एंड उसी में लोग ट्रेनिंग लेके जाते हैं और अपने अपने गाँव में अपने अपने शहर में जल संचय करने का सर्विस प्रोवाइड शुरू करते हैं, जिससे बहुत बड़ा कार्य हो रहा है।
1: 7,500 लोग तकरीबन आपसे
0: 7,400 लोग
1: जी, यानी 100 कम है उसमें। क्या इसमें वो लोग भी हैं जो ऐसे इलाकों से हैं जहां बहुत कम बारिश होती है, जैसे राजस्थान का इलाका है या कच्छ का इलाका है?
0: आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, वही हैं ज्यादातर।
1: अच्छा,
0: मध्य प्रदेश, यूपी, थोड़ा बहुत बिहार के एरिया जहां फ्लड होता है, वो भी लोग आते हैं।
1: अच्छा, वो भी,
0: क्योंकि सेम ये मैं सोच लीजिए पैरासीटामोल दे रहा हूं लोगों को। हर चीज मैं बोलता हूं पैरासीटामोल ले लो। पानी की कमी है तो भी आपको जल संचय करना है, पानी ज्यादा है तो भी जल संचय करना है, फ्लड आया है तो भी जल संचय करना है। तो इसलिए दो बीमारी है लेकिन इलाज सेम है।
1: इलाज सेम है। हाँ। और वो इलाज, मतलब उसकी मुहिम आप तैयार करें।
0: सेंट्रल महाराष्ट्र एंड हमारे ईस्टर्न महाराष्ट्र से, राजस्थान, गुजरात एंड बड़े बड़े म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से लोग आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड के लोग आते हैं, जिनका पानी विषय के लेकर जो डिपार्टमेंट्स हैं। क्योंकि एक मैंने रियलाइज किया है कि क्योंकि मैं 22 अलग अलग स्टेट्स में काम कर रहा हूं इस समय, तो हर स्टेट का क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या जुगाड़ हो सकता है, क्या वर्कआउट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, तो सबका थोड़ा थोड़ा मैंने देखा है, काम किया है। तो लोग, कई लोग मिलने आते हैं समझने के लिए कहां क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम में किस आइडियाज को हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और किसमें क्या फायदा ज्यादा होगा, किसमें फायदा कम होगा, और कम पैसे में जो काम हो सकता है उसके ऊपर हमारा ऑलवेज फोकस रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं DIY, डू इट योरसेल्फ।
1: यही तो जन भागीदारी है।
0: बस जन भागीदारी का मतलब ही है DIY। ये आज मैंने आपसे बात करते करते ये मेरे माइंड में आया है, जन भागीदारी मतलब DIY। हमारा एक DIY किट है जल संचय के ऊपर, जो मैं सबको देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ही है हर चीज। क्यों, जब मैं बोलता हूँ ना, आप मुझे waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए तो उनको DIY किट मिल जाता है। उससे उन लोगों का 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, और उसमें फिर मेरा मोबाइल नंबर दिया रहता है, हमारे इंजीनियर्स का, लोग फोन करके बात कर सकते हैं। एंड एक इंजीनियर के पास 1,000 लोग होते हैं जिनको उन लोग सपोर्ट करते हैं, एंड वैसे वैसे हमारे इंजीनियर्स बढ़ते जा रहे हैं। और एक आपको खूबसूरत बात बोलूंगा, इस समय पर 8 इंजीनियर्स हैं अलग अलग भाषा में।
1: अच्छा,
0: क्योंकि ऐसा बहुत हुआ है कि सबको हिंदी नहीं आती है, सबको अंग्रेजी तो नहीं आती है, बहुत लोग हैं सिर्फ गुजराती बोलते हैं, कन्नडा, तेलुगु, मलयालम के लोग हम ढूंढ रहे हैं अभी। नहीं, 7 सिस्टर्स से हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां के लोग और जुड़े हमसे। एंड वर्क फ्रॉम होम भी हम लोगों ने शुरू कर दिया, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम कीजिए। तो ऐसे लोकल लोग हैं, बंगाली तो मैं खुद बोल लेता हूं, उसमें मैं ठीक ठाक समझ जाता हूं, मेरी वाइफ इसमें जुड़ गई है, वो मराठी में लोगों को समझाती है। तो एक अच्छा चल रहा है एंड लोगों का एक संतुष्टि है, लोग खुश हो रहे हैं, लोग अपने अपने तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिस्कशन होता है, एंड बहुत एक खूबसूरत तरीके से पूरा देश आगे बढ़ रहा है।
1: वाह, किस तरह के बड़े बदलाव इस पूरी मुहिम के जरिए सामने आए हैं?
0: देखिए एक कहते हैं ना, स्टिच इन टाइम सेव्स

0: नाइन
1: उसको मैं हिंदी में कैसे बता सकता हूं? इसका हिंदी वर्ड एक कहावत है ऐसा कुछ कि अगर आप समय पे चीज का इलाज कर लें तो बड़ा समस्या बन के नहीं आता है।
2: बिल्कुल बिल्कुल सही है।
1: तो कोशिश ये रहती है कि जैसे ही हमें लगे कि पानी की कमी है तो एक छोटा सा उपाय जल तारा एक बड़े समस्या को अंदर आने नहीं देता है, उसके पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
2: समय रहते ही उपाय कर लेना,
1: समय रहते ही
2: जी।
1: बहुत सही बताया आपने। तो कोशिश ये रहती है जैसे एक एक देखते पूरा मोहल्ला डूब गया पानी में, अक्सर आता पूरा गांव डूब गया, क्यों डूबता है ये हमने रिसर्च करना शुरू किया है।
2: पानी की निकासी ठीक नहीं है।
1: हाँ, क्योंकि हम लोग पूरे पानी को एक जगह जमा होने देते हैं। अब सोच लीजिए हमारे सामने बहुत बड़ा टेबल रखा हुआ है, ये सोच लीजिए हमारा पूरा कहते हैं मुंबई शहर के मान लेते हैं
2: जी।
1: हर शहर में आप देख के लाइए एक ऊपर वाला जमीन होता है एक निचली जमीन होती है। अब बारिश तो हर जगह सेम हो रहा है, ऊपर वाले जमीन पे बारिश हुआ है वो सीधा बह के नीचे वाला जो सबसे जो लो लाइन एरिया है वहां पहुंच जाता है, तो वहां पे वर्षा जल निकासी नहीं हो पाता है। तो जल संचय एक वो तरीका है कि हर आदमी अपना पानी अपने घर में, एक स्कूल का पानी स्कूल में, एक ऑफिस का पानी ऑफिस में, एक प्लेग्राउंड का पानी प्लेग्राउंड में, एक मंदिर का पानी मंदिर में, मतलब हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कैच द रेन वेयर इट फॉल्स एंड व्हेन इट फॉल्स, ये उससे मैंने प्रेरणा लिया है।
2: मतलब हर जगह अगर पानी का इस तरह से संचय होगा तो जल भराव नहीं होगा,
1: बस,
2: और बाढ़ की समस्या नहीं होगी,
1: बस, और वो जमीन में जाएगा जो हमें काम आएगा
2: जी।
1: क्योंकि बहता हुआ पानी नदी में चला जाता है, समुन्द्र में चला जाता है। एंड बहुत बड़ी बात सोच ये है सर, मैं आप जो सुन रहे हैं आप समझिए, पहले हमें लगता था कि हम बहुत बड़े तालाब में पानी इकट्ठा करेंगे, हम लोग तालाब का पानी पीते थे, वो सूखने लग गया, क्यों? क्योंकि धूप बहुत तेज होता है। फिर हमने कुआं खोदा, लोग इतने हो गए कि कुआं सूखने लग गया, 50 फीट 100 फीट तक हम लोग कुआं खोदे हैं। उसके बाद हमने बोरवेल खोदा, बोरवेल हम लोग 200 300 400 कहीं कहीं तो मेरे पास फोन आता है 1800 2000 फीट नीचे तक बोरवेल से पाइप निकाल रहे हैं, बोर जो कहते हैं, अब वो भी सूखने लग गया, 70% से ज्यादा बोरवेल सूख चुका है। लेकिन हमें लगता था कि जाने दो बोरवेल को, जाने दो कुआं को, हम लोग तालाब बनाएंगे, हम लोग बांध बनाएंगे, हम लोग नदियों को रोकेंगे। वो अपने जगह ठीक है, लेकिन जिस हिसाब से इवेपोरेशन रेट बढ़ गया है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, भापीकरण, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण के जब ये कॉन्सेप्ट देखा गया था, मुंबई मॉडल अक्सर बात किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट में, देखिए मुंबई मॉडल कितना कमाल है, इन्होंने बड़े बड़े तालाब बनाए हैं, तालाब में पानी कलेक्ट करते हैं और हम लोग पूरा साल भर उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये चीज लोग भूल गए थे कि वाष्पीकरण एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आज के समय। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 27% वाष्पीकरण हो रहा है इस समय। तो ये वाष्पीकरण 2035 का एक प्रोग्राम इंडिया गवर्नमेंट लेके चल रही है कि उस समय जो सिचुएशन होगा हमें 10 साल पहले लगना पड़ेगा।
2: एक तिहाई पानी भाप बन के उड़ जा रहा है
1: जी। इस समय मुंबई में जो पानी की संकट है, पुणे में पानी की संकट है, चेन्नई में पानी की जो संकट है, बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन रेट, वाष्पीकरण,
2: गर्मी बढ़ गई है।
1: गर्मी बढ़ गई, हमें लगता था, पहले लगता था 12% पानी उड़ेगा
2: जी,
1: अभी 23
2: ऊपर हो गया।
1: बिल्कुल, यही हमारा प्रॉब्लम है। तो इसलिए अब तालाब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा, हमें पानी जमीन के अंदर पहुंचाना बहुत जरूरी है। जल संचय का तालाब भी एक तरीका है, लेकिन जल संचय तालाब का पानी उड़ जा रहा है, पानी जो जमीन के अंदर जाएगा वो कभी एवेपोरेट नहीं होता, आप 100 साल बाद भी निकाल सकते हैं।
2: इसमें बॉटम लाइन ये है कि पानी का ये संचय हम सबको करना होगा। जो पानी की कमी का शोर मचाते हैं, जो अपार्टमेंट्स में रहते हैं, जो पानी को वेस्ट करते हैं, सोसाइटीज, अस्पतालें, उसके अलावा तमाम बंगलोज, ऑफिस, प्रार्थना स्थल, हर एक जगह पर लोगों की जिम्मेदारी है कि वो पानी बचाएं, वरना आने वाले कल में दिक्कत होने वाली।
1: ये हर इंसान को अपने हिस्से का पानी, इसको मैं थोड़ा, आप जो बोल रहे हैं इसमें बस एक शब्द जोड़ दिया हूँ,
2: जरूर
1: अपने हिस्से का पानी बचाइए, बस दूसरे का मत सोचिए, अपना कर लीजिए तो अपने आप हो जाएगा सब।
2: तो सब अपने अपने हिस्से का पानी बचाएं तो ये सारी मुहिम जुड़ के एक बड़ा बदलाव ले।
1: बिल्कुल, इसलिए तो हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जल संचय जन भागीदारी बहुत जरूरी है।
2: बिल्कुल,
1: हम लोग क्या लगता है हर दूसरा आदमी करेगा, म्यूनिसिपलिटी काम करेगी, कलेक्टर साहब काम करेंगे, मजिस्ट्रेट साहब का काम है, हमारा काम नहीं है, डीएम मैडम का काम है, ऐसा नहीं होता है, हम सबका, हमारा पानी हमारा घर, हमारा पानी हमारा स्कूल, हमारा पानी होता है जो भगवान ने हमें दिया है, इस जगह के लिए दिया है,
2: हमें बचाना है। तो चलते चलते अपने कॉल सेंटर का नंबर और वो ईमेल आईडी दोबारा बता दीजिए, और ये कि कैसे लोग खुद को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल भी इससे जुड़ सकता है, क्योंकि ये बहुत पेचीदा काम नहीं है।
1: बिल्कुल।

0: 2 घंटे 3 घंटा मेहनत करना पड़ता है। किसी को भी इस बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए हो तो waterheroofindia@gmail.com पे मेल कीजिए, आपको इसमें ऑटोमेटेड रिस्पांस मिलेगा, नंबर्स मिलेंगे, उसको पढ़ लीजिए, फिर हमें फोन कीजिए, हम आपको और भी इसमें डिटेल दे देंगे। एंड प्लस मैं दोबारा बोलूंगा, हमारा जो स्किल डेवलपमेंट कैंपेन चल रहा है पूरे देश में, अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रूप में भी इसको आप देख सकते हैं, आप खुद सीखिए, अपने गांव में, अपने शहर में ये सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कीजिए, ताकि जिस हिसाब से 7,400 लोग इससे जुड़े हैं, और भी लोग इससे जुड़ जाएं और अपना घर भी इसमें चला पाएं। थैंक यू
1: सुभजीत जी, ये जो मैटिनी शो के तहत आपसे बातें हुई हैं, अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें बाकी हैं, पर इस हफ्ते के लिए आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन इजाजत लेने से पहले हम चाहते हैं कि अपनी पसंद का एक गाना, बल्कि कहें कि अपनी पसंद के एक गाने की आप फरमाइश करें, हम उसको पूरा करेंगे।
0: एक गाना मुझे हमेशा बहुत प्यारा लगता है जो नेचर से रिलेटेड है
1: जी,
0: एंड मेरी मम्मी भी वो गाती थी, अभी उनका फेवरेट था, अभी तो वो नहीं है, बट मुझे भी बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा गा दूं आपके
1: जरूर,
0: सामने।
1: जरूर जरूर स्वागत।
0: हरी हरी व सुंदरा पे नीला नीला ये गगन,
1: वाह वाह,
0: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार। तो बस ये गाना सुना दीजिए, बहुत दिन हो गए सुने हुए।
1: क्या बात है, बूंद जो बन गई मोती फिल्म का गाना, मुकेश की आवाज, भरत व्यास के बोल और सतीश भाटिया का संगीत।
0: अरे वाह,
1: सुनते हैं ये गाना।

0: बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती के स्टूडियो में आने के लिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी और आगे की बातें करेंगे।
1: थैंक यू जी।
0: चलते चलते आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग और प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। तो अब यूनुस खान को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते हम फिर मिल रहे हैं मैटिनी शो में और बातें करेंगे जल है तो कल है की।

0: लोगों की ताल पर आप विविध भारती के संग हैं। अगले कार्यक्रम के लिए कुछ पलों का इंतजार। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए।

0: अमर प्रेम फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना। दिन की इस भागदौड़ में दिन की 12:11 विविध भारती यादों की महफिल।
1: मस्ताना प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना प्यार।

0: cena.
1: आराधना फिल्म का गाना था और अब द ट्रेन फिल्म का गीत आनंद बख्शी राहुल देव बर्मन. मोहम्मद रफी की आवाज़.

0: संभालो मुझको ओ मेरे यार, संभलना मुश्किल।
1: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
2: वो तेरे प्यार का।
1: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
3: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
1: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
4: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
1: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
5: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
1: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।
6: हो तो

0: होती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और
2: आ गया। कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ

अजनबी फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आपने सुना आनंद बख्शी की बोल थी आर डी बर्मन की तर्ज थी राजेश खन्ना की याद, यादों की महफिल।

आइए सुने सुरीला सफर। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। जैसे कि आप जानते हैं, सुरीले सफर कार्यक्रम में हम एक टेक्स्ट पोस्ट करते हैं और उसके जरिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी से जुड़ते हैं और हमारी और आपकी होती हैं बातें और तय होता है कार्यक्रम का एक सफर। आज की इबारत या आज का टेक्स्ट ये है, कभी कभी किया है ऐसे कि बहुत सोचा ये कहना है वो कहेंगे, पर जब कहने का मौका आया तो कुछ नहीं कहते बना, या ये लगा कि छोड़ो अब क्या कहना है। कभी प्रेम पत्र लिखने की हिम्मत की, कुछ तो दिल ने कहा होगा। अपने दिल की बात सुनो, दिल कहता है कह दूं तो बोलो बोलो, नजाकत से कहूं तो चुप रहिए, नजाकत से कहूं तो चुप न रहिए, बोलिए दिल की बातें। तो भाई ये था आज का टेक्स्ट, या ये कहूं कि ये है आज का टेक्स्ट। और बहुत सारे श्रोताओं के बहुत सारे रिस्पॉन्सेज हमें मिले हैं और कई श्रोताओं ने अंदाजा लगाया है कि आज के गाने कौन से हो सकते हैं, आज के शब्द कौन से हो सकते हैं। और कुछ तो लोग कहेंगे, ये एक श्रोता का कमेंट है, एक श्रोता लिखते हैं कि थोड़ी देर पहले राजेश खन्ना को आपने याद किया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक श्रोता लिखती हैं, कभी कभी ऐसा ही होता है, कुछ कहना चाहो पर बातें मन में रहकर मुंह से नहीं निकल पाती, शायद सुनकर किसी को दुख ना पहुंच जाए, कभी किसी के सम्मान को चोट ना लग जाए। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि इंसान सब कुछ भूल सकता है लेकिन अपने मन की उस लाचारी को नहीं भूल सकता जब सब कुछ सामने था पर फिर भी मुट्ठी से फिसल गया, वो एक पल की हिचक उम्र भर का सन्नाटा बन गई। आज जब भी पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि

सबसे भारी बोझ उन शब्दों का होता है जिन्हें हम कभी बोल नहीं पाते। बहुत ही बड़ी बात कह गए हैं हमारे श्रोता। एक और श्रोता का ये कमेंट है, बहुत कुछ सोचा था कहने को, पर लफ्जों ने जब मोड़ लिया, दिल की बात दिल में ही रह गई या हमने कहना छोड़ दिया। कभी लिखे थे जो खत पन्नों पर, वो स्याही आज भी कुछ कहती है। नजाकत से सुनो दिल की धड़कनें, जो अनकही बात तब भी बहती है। खामोशियों के इस मेले में अब खुद से ही कुछ सवाल कीजिए, जो दिल कहे वो सच बयां कर दीजिए। डरिए मत, बस आज कुछ बोलिए। ये हमारे तमाम श्रोताओं के कमेंट्स हैं और आज के इस कार्यक्रम का सिलसिला शुरू करना है, तो चलिए ये रहा आज का पहला गाना। और अमूमन हमारे इस कार्यक्रम में हम गानों से जुड़े सवाल करते हैं, लेकिन आज क्यों ना बातें करें। हमें बताइए कि कब जिंदगी में ऐसा मौका आया जब कुछ कहना था और कहते नहीं बना। किस किस की जिंदगी में ऐसा मौका आया था। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाइए, सुरीला सफर वाली पोस्ट पर लिख दीजिए ये बात। इस गाने के बाद आप सभी की बातें शामिल करते हैं। कैसे आप अपनी बात नहीं कह पाए या कैसे आपने संकोच छोड़ा और अपनी बात कह दी, दोनों ही बातें लिखी है।

एकदम जैसे ही खत्म हुआ ये लगा कि अरे ये गाना तो खत्म हो गया और अब देखिए कि बहुत सारे श्रोता ऐसे हैं जो लगातार विविध भारती के फेसबुक पेज पर अपनी बात लिख रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं सुरीला सफर कार्यक्रम में, वो इस कार्यक्रम के साझीदार बनना चाहते हैं और अपनी बात कहना चाहते हैं। तो सायरा बानो सुनील दत्त, ये एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत ही शानदार आगाज हुआ है। एक श्रोता का कहना है कि मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि वक्त पर बोल नहीं पाती पर बाद में पछतावा होता है कि ऐसा बोल देती या कह देती। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि लाइफ में कई बार ना कहना कितना मुश्किल होता है तो मैंने भी नहीं कहा। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा कि हमारी सगाई के कुछ महीनों बाद पारिवारिक फंक्शन में मेरी होने वाली धर्मपत्नी से अलग से मिलना हुआ था अजमेर शहर में। पहले मैंने सोचा कि मैं ये कहूंगा वो कहूंगा पर कुछ ना कहकर बस मैंने यही कहा, 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है कल भी रहेगा। और वो ये बात सुनकर मुस्कुराई थी। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही दिलचस्प है। एक और श्रोता है जिन्होंने कहा, कह दिया हाले दिल तो एक सुकून पा लिया, खामोशी का वो भारी बोझ दिल से हटा लिया। क्या बात है, क्या हाले दिल कह पाए, अपनी बात कह पाए या बस दिल की दिल में ही रह गई। किस गीतकार का है ये गाना, यही है आपको बताना। और साथ में ये भी कि आपने कब किसको प्रेम पत्र लिखा था। ये जो लव लेटर लिखने की बात है, जरा आज इस राज को खोल ही दीजिए।

संगम फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के रिस्पॉन्सेज आए हैं हमारे सवाल के जवाब में। एक श्रोता लिखते हैं कि सगाई के बाद अपने होने वाले पति को प्रेम पत्र लिखा था क्योंकि वो जमाना ऐसा था जवाब भी आया करता था और ये खत हमने पिछले 28 साल से संभाल कर रखे हैं। एक और श्रोता कहते हैं जिंदगी में हर रोज न जाने कितनी बातें हम किसी से कहना चाहते हैं लेकिन कह नहीं पाते। और आगे वो लिखते हैं कि जैसे भोलेनाथ ने विष को गले में रख लिया था वैसे ही कई बातें हम विष समझकर पी लेते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि हमने किसी को लव लेटर लिखा लेकिन कुछ मित्रों को जरूर लव लेटर लिख के देते थे जो हम नहीं लिख सकते थे, उनके जज्बात हम अपनी कलम से लिखते थे। एक और श्रोता हैं जो लिख रहे हैं कि पुराने पन्ने पलटवा रहे हैं, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। एक और श्रोता लिख रहे हैं कि आज आप सोच कर आए हैं कि हर किसी के छिपे हुए राज निकलवाएंगे। एक और श्रोता हैं जो कह रहे हैं कि कहना तो चाहते थे कहा भी पर लोगों ने सुनी और फिर हमें ऐसा छोड़ा कि जैसे हम कुछ नहीं थे। ये एक श्रोता अपना दुख शेयर कर रहे हैं। एक और श्रोता है जो कह रहे हैं कि लव लेटर लिखा नहीं था, किसी का मिला था, वो भी सांकेतिक भाषा में क्योंकि वो जमाना ही ऐसा था। और इसके अलावा और भी बहुत सारे श्रोता हैं जो अपनी बात कह रहे हैं। ट्यूशन पढ़ते समय उसकी हया भरी नजरें संग मुस्कान को जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई, ये 50 साल पुराना वाकया है। ये एक श्रोता है उन्होंने कहा। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है शादी के बाद जब मायके जाती तब ये सोचती मम्मी पापा से ये कहूंगी वो कहूंगी पर जब मिलती थी तब न जाने उनकी बातें सुनने में ऐसी रम जाती थी कि बहुत सी बातें बाद में याद आती थी कि ये कहना था वो कहना था पर कई बातें कुछ कभी बोल नहीं पाई, पापा नहीं हैं पर कह नहीं पाई बातें। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि कॉलेज लाइफ में जिससे जो कहना था कह नहीं पाए और वो दूर चली गई। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि प्रेम पत्र की बात चली है तो बता देता हूं कि बिफोर मैरिज मैंने भी बहुत सारे प्रेम पत्र लिखे। एक ही को ये जरा क्लियर कीजिएगा, अभी संभाले हुए हैं, कोई रविवार की मस्तानी शाम को फिर से पढ़ लेते हैं। ये एक श्रोता की बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है लिखते हैं कि जो दुनिया से चले गए उनसे बहुत कुछ कहना था। और इसके अलावा और एक श्रोता है जो लिखते हैं कि कहना बहुत कुछ था पर कह नहीं पाए, फिर देर हो गई, कुछ शर्म और कुछ डर रहा। ये तमाम श्रोताओं की बातें। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और गाना सुनते हैं। ये आपको बताना है फिल्म का नाम। प्रेम पत्र की बात हुई तो कई लोगों ने जवाब दिए, अब जरा ये बताइएगा कि नॉर्मल चिट्ठी पिछली बार कब और किसको लिखी थी आपने।

एक श्रोता बड़े अफसोस से कह रहे हैं, क्या बताएं यूनुस जी, किस्मत कुछ ऐसी रही कि श्रीमती जी के अलावा किसी को प्रेम पत्र नहीं लिख पाए। अब श्रीमती जी जब भी मायके जाती थीं तो लिख दिया करते थे, फिर मोबाइल आने पर यह सिलसिला भी खत्म हो गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता लिखते हैं कि अब चिट्ठी पत्री का जमाना चला गया है और संदेश बॉक्स के साथ सांकेतिक इमोजी से ही लोग काम चला लेते हैं, और जो समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो उनकी भला से। ये बहुत महत्वपूर्ण बात एक श्रोता ने लिखी है। एक और श्रोता है, लिखते हैं कि चिट्ठी एक बार भी नहीं लिखी लेकिन पोस्ट ऑफिस से पार्सल बहुत सारे पोस्ट किए हैं रिसेंटली। एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि नॉर्मल चिट्ठी लिखे, पिछली बार कब लिखी थी ये तो याद नहीं है, पर पिताजी का लिखा हुआ 1978 का अंतर्देशी मिला, आज पिताजी नहीं है पर ये पत्र मैंने संभाल कर लिखा। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि उन्होंने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती को लिखा था, बहुत बढ़िया बात है। एक और श्रोता ने आखिरी पत्र जो है वो विविध भारती में लिखा था और उनकी इल्तिजा ये है कि मनचाही गीत कार्यक्रम में शामिल किया जाए। इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो ये लिख रहे हैं कि आजकल जमाना बदल गया, आज के माँ बाप तो बच्चों की सुन लेते हैं, हमारे जमाने के माँ बाप कुछ कहते सुनते नहीं थे, उससे पहले उनके हाथ बोलने लगते थे और हम कुछ बोल नहीं पाते थे। कुछ दिल ने कहा ये गाना बहुत सारे श्रोताओं के दिल तक उतरा है। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अपने साथी को पहला खत लिखा जो पोस्ट नहीं किया, किसी के द्वारा भिजवाया। इसके अलावा कुछ और श्रोताओं के कमेंट से एक श्रोता लिखते हैं कि मेरा एक दोस्त उड़िया था, उसे एक हिंदी भाषी लड़की से प्यार हो गया था, वो मुझसे हिंदी में प्रेम पत्र लिखवाता था, वही पहला प्रेम पत्र था। भाई देखिए, वाया वाया प्रेम पत्र यानी किसी और के लिए लिखे गए प्रेम पत्र की बात है, ये भी बहुत ही दिलचस्प बात है। कुछ और कमेंट्स अगले गाने के बाद शामिल किए जाएंगे। यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात आई थी, वो इमोजी।

0: 21 जुलाई गीतकार आनंद बख्शी की याद का दिन।
1: वो तेरे प्यार का।
0: 22 जुलाई पार्श्व गायक मुकेश का जन्मदिन।
2: मुबारक हो सबको समाय सोहा।
0: विविध भारती लेकर आ रहा है दो खास कार्यक्रम।
3: धीरे धीरे बोल कोई सुनना।
0: गीतकार आनंद बख्शी के बेटे राकेश आनंद बख्शी याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
4: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में, वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो।
1: भाई हमने अपने श्रोताओं से ये पूछा था कि इमोजी के बारे में उनकी क्या राय है, तो बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पत्र लिखते और पढ़ते वक्त जो भाव मन में आता है वो किसी इमोजी या व्हाट्सएप चैटिंग से नहीं आता, केवल खाना पूर्ति होती है। इसके अलावा एक और श्रोता है लिखती है कि डाकिये का इंतजार करना और खत का लिफाफा खोलना, इसमें जो उत्सुकता थी वो किसी डिजिटल नोटिफिकेशन में नहीं हो सकती। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि व्हाट्सएप में वो फीलिंग नहीं आती है जो हम लेटर में लिखा करते थे। इसके अलावा एक और श्रोता का कहना है कि चिट्ठी में जो लिखा जाता है उसमें संवेदनाएं होती हैं, विश्वास होता है, उम्मीद होती है, प्यार होता है। किसी की चिट्ठी जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उससे हम बातें कर रहे हैं, और चिट्ठी पढ़ने के बाद हमारे दिल और दिमाग में एक उथल पुथल आती है जो हमें बेचैन कर देती है, लेकिन व्हाट्सएप और इमोजी में ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं जिसमें हमने कुछ अभी पढ़ा था। इसके अलावा एक और श्रोता है लिख रहे हैं कि इमोजीज का आजकल बहुत अच्छा उपयोग हो गया है, कई बार कुछ भी लिखने के लिए इमोजीज से मन की बात अच्छे से जाहिर हो जाती है। कुछ शब्द ऐसे हैं जो ब्लैंकली लिख दें तो उसका वो अर्थ ना निकले जो इमोजी के बाद होता है। तो एक श्रोता है जिन्होंने इमोजी का सपोर्ट किया है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखती है कि हमें इमोजी नहीं पसंद है फिर भी भेजते हैं जल्दी के लिए, वैसे लिखकर संदेश भेजना ज्यादा पसंद है। एक श्रोता लिखते हैं कि हमारी पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनकी सहेली हमारे कॉलेज के पते पर खत भेजती थी और हमारे खत को पढ़कर उन्हें सुनाती थी। ये बात 57-58 साल पहले की है। एक और श्रोता है जो लिखती है कि आपने ये जो पूछा है इमोजी का, तो इमोजी मुझे अच्छी नहीं लगती, ये फीलिंग बता पाते हैं, आजकल के बच्चों को बता पाते हैं, पर मुझे तो इमोजी से कोई फीलिंग नहीं आती। ये एक श्रोता की बात है। तो भाई बहुत सारे श्रोताओं ने इस तरह से अपने रिस्पॉन्सेज दिए हैं और इमोजी के बारे में अपनी बात कही है। देखिए ये जो कार्यक्रम है सुरीला सफर, इसके बहाने कितने सारे श्रोताओं के ख्यालात हमें पता चले, और लगातार जो कमेंट्स आ रहे हैं ना फेसबुक पर, लगातार ऊपर स्क्रॉल होते रहते हैं। और इसी पल एक श्रोता ने ये लिखा है कि कम ही हमें इमोजी की भाषा समझ में आती है, ना समझी से खुशी की जगह गुस्से वाली इमोजी भेजने से बहुत सारे मित्र हमसे नाराज भी हो गए हैं। एक और श्रोता लिखते हैं कि कागज पर लिखी चिट्ठी तकिए के नीचे रखकर सो सकते हैं, पर मोबाइल तकिए के नीचे रखकर कैसे सोए। चिट्ठी में हम अपने जज्बात उड़ेल देते थे, चिट्ठी में उसका चेहरा देखते थे, जो बात पत्रों में है वो मोबाइल के मैसेजेस में कहां है। कितनी प्यारी बातें हमारे श्रोताओं ने लिखी हैं। अगर आपने अभी तक अपनी बात नहीं कही है, डिजिटल चिट्ठियां और फिजिकल चिट्ठियां यानी हाथ से लिखी हुई चिट्ठियां या व्हाट्सएप के जरिए भेजे गए संदेश, इन दोनों में से आप किसे प्रेफर करते हैं, और दूसरी बात क्या इमोजी सचमुच में अपनी बात कहने का अच्छा जरिया है, ये दोनों बातें बताइएगा। अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं।

भाई ये गाना खत्म हो गया और इतने सारे मैसेजेस इस बीच धड़ाधड़ आए हैं, मैं कोशिश करता हूं कि ज्यादातर मैसेजेस आपको पढ़ के सुनाऊं। चिट्ठियां दिल की बात शब्दों में पिरोने के लिए वक्त और सब्र मांगती हैं, जो एक गहरी आत्मीयता पैदा करता है। हाथ से लिखी चिट्ठी हमेशा के लिए एक निशानी बन जाती है, जिसे सालों साल सहेज कर रखा जा सकता है। ये हमारे एक श्रोता की बात है। उसके अलावा एक और श्रोता है जो ये लिख रहे हैं कि पहले चिट्ठी लिखना पढ़ना पर लिखवाने वाले के आंसू और पढ़ते समय भी उनकी रुलाई देखकर अपनी भी रुलाई आती थी। मैं नानी के साथ रहती थी, मां दूर रहती थी और जब भी नानी अपनी बेटी को पत्र लिखवा रही होती थी तो आधी बात रोते रोते ही लिखी जाती थी और मैं रोते रोते लिखते चली जाती थी। इसके अलावा एक श्रोता है जो लिखते हैं, प्रेम पत्र लिखने के बाद जब उसे पहुंचने का नंबर आता था तो रिश्वत भी खिलानी पड़ती थी, बच्चों को आइसक्रीम टॉफी बिस्किट। ओहो हो, ये कहने का मतलब है आपका, मैं समझा। इसके अलावा एक श्रोता है जो ये कह रहे हैं कि आज की छोटी सी इबारत में बहुत कुछ कह दिया है। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि इमोजी डिजिटल भाव त्वरित प्रकट कर देते हैं, आजकल के लोगों के पास इतना समय कहाँ है सुनने बताने का, पर पत्र में तो पूरी बात लिखने और बताने का आनंद ही अलग था। और इसके अलावा एक श्रोता है जो लिख रहे हैं कि मैसेज के बीच बीच में इमोजीज यूज करने से वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है। इसके अलावा एक और श्रोता लिखते हैं कि इमोजी और ऑटो टेक्स्ट दोनों खतरनाक हैं और कई बार अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती में वो हमेशा चिट्ठी लिखते हैं और उनकी शिकायत ये है कि आज तक उनकी चिट्ठी शामिल नहीं हुई है। एक श्रोता ने बहुत ही नॉस्टैल्जिक कर दिया, पहले चिट्ठियां एक तार वाले स्टैंड में घूप कर रखी जाती थी, नीचे लकड़ी का एक गोल सा टुकड़ा रहता था, सारी चिट्ठियां सुरक्षित रहती थी। आज भी हमारे पास 70 साल पुरानी चिट्ठियां संग्रहित हैं। 70 साल, क्या बात है। इसके अलावा एक और श्रोता है जो कहते हैं कि इमोजी तो हमें शुरू से समझ नहीं आया और कई बार गलत सलत इमोजी

जाते हैं। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, दिल की धड़कन आत्मा की प्रतिध्वनि है। जब हम कागज पर कलम चलाते हैं तो हमारी उंगलियों के साथ साथ हमारी भावनाएं भी बहती हैं। पत्र में ठहराव होता है, गहराई होती है, जो पढ़ने वाले के दिल को सीधे छूती है। और दूसरी ओर इमोजी आज के दौर का शॉर्टकट है भाई, शॉर्टकट का जमाना है। ये हमारे तमाम श्रोता एक्सेप्ट कर रहे हैं। और एक श्रोता लिखते हैं कि पहले पत्र लिखने के लिए फूल का फोटो बनाना पड़ता था, चिट्ठियों में परफ्यूम तक डाले जाते थे, ये इमोजी में कहां हो सकता है। चिट्ठी छूकर जो निकटता महसूस होती है वो डिजिटल संदेशों से नहीं होती। एक और श्रोता, जज्बात सिर्फ खत से महसूस होते हैं, जब खत पढ़ना शुरू करते थे तो यूं लगता था सामने वाला हमारे सामने खड़े होकर कुछ कह रहा है। कितनी प्यारी बातें। चलिए ये तमाम बातें और उसके बाद ये गाना, आप फिल्म का नाम बताइए।

पंक्ति को कोट किया है, कुछ कहने पे तूफान उठा लेती है दुनिया, अब इस पे कयामत है कि हम कुछ नहीं कहते। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि आज आपने यादों का पिटारा खोल रखा है जिसमें चिट्ठियों भरा प्यार है, कुछ प्रेम की बातें हैं, कुछ पुराने जज्बात हैं जो हमें सदा जवां रखते हैं। इसके अलावा एक और श्रोता है जिन्होंने ये लिखा कि मैंने तो कभी पत्र नहीं लिखा, लेकिन मेरे बड़े पापा हैं वो वायलिन वादक हैं और उन्होंने लता मंगेशकर जी को एक पत्र लिखा था। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि रंग बिरंगी इमोजी बहुत सुंदर दिखती हैं और वो आपके संदेशों को अट्रैक्टिव बनाती हैं। तो भाई एक पहलू ये भी है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि एक वक्त था जब लोगों के पास समय बहुत था और भावनाएं अपरंपार थी, चिट्ठियां पोल भी खोलती हैं। अगर किसी की चिट्ठी किसी दूसरे के हाथ पड़ जाए या कोई पुरानी चिट्ठी किसी के हाथ लग जाए तो आपसी संबंध तक खराब हो सकते हैं, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि भागदौड़ आपाधापी में किसी के पास समय नहीं है कि वो बैठकर चिट्ठियां पढ़े, इसीलिए सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया और इमोजी का सहारा लिया जा रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आया एक जमाना था जब डाकिया घर पर आता था तो खुशी की लहर दौड़ जाती थी। एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि आज के समय में अजीब लगेगा लेकिन मैं अभी भी दीपावली, न्यू ईयर, ईद और क्रिसमस के ग्रीटिंग कार्ड्स एनवेलप पोस्ट से स्टैंप लगाकर भेजता हूं और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। कितनी प्यारी बात है, ये पुरानी परंपरा को आपने आज तक कायम रखा हुआ है, ये बहुत ही बढ़िया बात है। और तमाम श्रोता जब सुनेंगे तो जाहिर है कि उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलेगी। एक श्रोता है जो लिखते हैं कि एक जमाना था जब आई लव यू कहने से पहले लोग खत लिखते थे, उस खत में जल्दीबाजी नहीं होती थी, इंतजार, अपनापन और ढेर सारे एहसास होते थे। ये हमारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, तमाम कमेंट्स को शामिल करना बड़ा मुश्किल है लेकिन मुख्य मुख्य कमेंट्स को मैं शामिल करता चला जा रहा हूं और आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाता जा रहा हूं। अब जरा सोचिए कि दिल की बात कहने की जो झिझक है उसे साहिर लुधियानवी ने इस गाने में किस तरह से पिरोया है। फिल्म का नाम आप बताइएगा और साथ में ये कि क्या कभी आपको भी ऐसा लगा कि आज मुझे कुछ कहना है और फिर लगा छोड़ो अब क्या कहना है, यानी आप संकोच संकोच में रह गए।

कितना प्यारा गाना है और कितना सही एक श्रोता ने लिखा है कि किशोरदा का ये गाना जितनी बार सुनो वही किशोरदा के साथ सुधा मल्होत्रा का नाम भी लिखना चाहिए। किशोरदा और सुधा मल्होत्रा का ये गाना जितनी बार सुनो दिल नहीं भरता है। और एक श्रोता ये लिखते हैं कि मुझे कुछ कहना था पर सोचते सोचते कई बरस लग गए और वो किसी और की हो गई। और इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने कहा है कि इस गाने के संगीतकार हेमंत कुमार हैं। और एक श्रोता ये लिख रहे हैं कि क्या ये फिल्म कहीं देखने मिल सकती है, अब ये तो खोज कर बताना पड़ेगा। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि पढ़ाई के दौरान जब अपने किसी खास दोस्त से कुछ बात कहने का दिल में उमड़ घुमड़ होता था, भाई इन्हीं के शब्द हैं कि आज दिल की बात जरूर कहेंगे लेकिन ऐन वक्त पर मन कहता चलो कभी दूसरी बार, मेरे साथ ऐसा ही होता रहा है। ये एक श्रोता की बात। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट्स धड़ाधड़, ये जो मोबाइल की कंप्यूटर की स्क्रीन है ये स्क्रॉल होती चली जा रही है। श्रोता लिख रहे हैं कि हमने कई लोगों के खत भी पढ़कर सुनाए और कुछ लोगों को खत भी लिखे और उन्हें समझाया भी और बातें सुनकर रोए भी वगैरह वगैरह। इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि मैं बचपन से विविध भारती सुनती हूं, मेरी माँ और मेरी दोनों बहनें विविध भारती की फैन हैं। इसके अलावा एक श्रोता लिखते हैं कि आपने पूछ ही लिया है तो आज बता देते हैं, 40 साल पहले की बात है, मेरी दुकान पोस्ट ऑफिस के सामने थी, आज भी है, ससुराल से श्रीमती जी का पत्र आता था, पोस्टमैन मुझे इशारा कर बुलाकर दे देते थे क्योंकि पिताजी जब सामने बैठे होते थे तो शर्माती थी। ठीक है भाई, ये एक बात का खुलासा हुआ। इसके अलावा कुछ और श्रोता हैं जिनकी बात, एक श्रोता ये लिखते हैं कि विविध भारती ने अब ये मौका दिया है कि हम चिट्ठियों के जरिए अपनी फरमाइशें भेजें तो हम भेज रहे हैं। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि इमोजी के जरिए हम तो अपनी फीलिंग नहीं बता पाते पर हाँ बच्चे जरूर जानते हैं कौन सी इमोजी किस तरह की है और बताते हैं। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई इमोजी भेजनी और कोई गड़बड़ इमोजी आपने भेज दी हो क्योंकि आपको उसका मतलब ही नहीं पता हो और उसके बाद किसी ने आपको आपकी गलती का एहसास दिलाया और उसके बाद आप बहुत हंसे हो? ये किस फिल्म का गाना है ये आपको बताना है। और तब तक ये जो डिजिटल संदेश है ना, इनमें कई बार ये होता है कि किसी को भेजा जाने वाला संदेश किसी और को भेज दिया जाए। इस तरह का गड़बड़झाला भी आपने किया है तो बताइए।

0: सोचो ना यार क्या हुआ।
1: जमाने को दिखाना है फिल्म का ये गाना आप सभी ने सुना और बहुत सारे श्रोताओं के इतने सारे कमेंट्स आए हैं। एक श्रोता ये लिखते हैं कि एक बार चश्मा लगाया नहीं था तो पता नहीं चला, कुछ का कुछ इमोजी बीच गया, बाद में समझ में आया। भाई ये चश्मा लगाना कितना जरूरी है ये इस कमेंट के जरिए पता चल गया। इसके अलावा बहुत सारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कभी कुछ का कुछ बिक जाता है तो गिल्टी फील होता है। और इसके अलावा एक और श्रोता उन्होंने भी बिल्कुल यही बात लिखी है। और तो बहुत सारे श्रोताओं ने ये कहा है कि भाई आज बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ और बहुत सारी बातें कहने का मौका आप सभी ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया। फिर मिलेंगे, सुनते रहिए विविध भारती, क्योंकि विविध भारती है देश की सुरीली धड़कन। और दिन की इस भागदौड़ में आपको जहां कहीं भी रहना है विविध भारती के संग रहना है।

0: याद करेंगे अपने पिता को 21 जुलाई शाम 4 बजे।
1: उन्होंने क्या किया कि एक नौकरी पकड़ ली टाइम पास, एक सिनेमा हॉल था वहाँ पे पास में, पैसे नहीं चाहिए थे, फिल्म देखने को मिलता था फ्री में। वो छड़ी से जो उनको मार पड़ी है उसके बाद जबरदस्त मार पड़ी।
0: 22 जुलाई को स्टूडियो में होंगे दो गायक मुख्तार शाह और गोविंद मिश्र, जो गाएंगे मुकेश के ढेर सारे गाने।

0: बेती है।
1: और बताएंगे क्या जगह है मुकेश की उनके जीवन में।
2: वो उनकी तो एक दिल में छवि ऐसी है कि जिसको बोलते ना कि पूजा जाता है।
3: वो अगर होते तो शायद मैं पैर पकड़ के बैठा ही रहता।
1: याद रखिए 21 और 22 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

से मिले प्यासे प्यासे कुछ हम कुछ तुम, क्या हो जो घटा खुल के बरसे रुम झुम रुम झुम।

0: हेलो हेलो नानी।
1: हाँ गुड़िया।
0: अरे हाँ हाँ मैं गुड़िया ही बोल रही हूँ, मुझे पता था आपका फोन आएगा।
1: हाँ अच्छा अच्छा जल्दी बता वो आया कि नहीं।
0: अरे रुकिए मैं खिड़की के पास ही जा रही हूँ, खिड़की तो खोलने दीजिए।

0: हाँ बोलिए नानी, आपकी टाइम की सेंस बड़ी परफेक्ट है।
1: नानी किसकी हूँ?
0: आपका फोन आया, मैंने खिड़की खोली और मैं नीचे देख रही हूँ कि भूरे भी अपने ठिकाने पहुँच गया है।
1: अरे गुड़िया, तो खिड़की पर आ भी गई फिर भी सामने वाले फ्लाईओवर का शोर नहीं सुनाई दे रहा।
0: ओफो नानी, आप भूल गई लगता है, लॉकडाउन चल रहा है भाई, पूरा सन्नाटा पसरा है, शोर कैसे आएगा।
1: अरे बेटा, मैं तो ये जानना चाहती हूँ कि भूरे का डिनर हुआ कि नहीं।
0: आप भी ना नानी, डिनर तो हम करेंगे थोड़ी देर में। उफ, ये मैं क्या बोले जा रही हूँ, वैसे आप ठीक ही कह रही हैं, भूरे भी तो डिनर ही करेगा ना रात में, अब भले दूध भात खाए या रोटी।
1: आज क्या मिल रहा है उसे, क्या लाया बेरा, दूध भात की ब्रेड?
0: आप उसे बेरा क्यों कह रही है, अरे वो तो उजला फरिश्ता है, रोज शाम अपने साथ भूरे के लिए पानी और खाना लाता है।
1: देखो गुड़िया, खाना जो बनाए वो खानसामा और जो खाना परोसे वो बेरा ही हुआ ना। अच्छा ये बता, तू उसे उजला फरिश्ता क्यों कह रही है?
0: अरे नानी, वो इसलिए कि या तो वो व्हाइट टी शर्ट पहन के आता है या उसकी टी शर्ट में थोड़ा बहुत व्हाइट कलर होता जरूर है, और काम तो वो एंजल जैसा ही करता है, तो हुआ ना उजला फरिश्ता।
1: बड़ी खोज खबर रखती है रे तू उसकी, है?
0: हाँ, और पता है दादी क्या कहती है, वो कपड़े उजले पहनता है, उसका मन भी उजला है, तभी तो हर रोज भूरे के लिए खाना लेकर आता है। पता है नानी, बारिश हो तो भी आता है, और दादी ने ही उसे ये नाम दिया है उजला फरिश्ता, इनोसेंट एनिमल्स की हेल्प करने वाला एक एंजल।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बातों की दादी, अब ये बता आया कि नहीं तेरा उजला फरिश्ता?
0: अभी तक तो नहीं आया नानी, पता है नीचे भूरे भी इंतजार में बैठा है।
2: अरे गुड़िया बेटा, गुड़िया आ जाओ बेटा, तुम लोग सब लोग खाना खाने के लिए तैयार हो गया खाना।

0: कैरेट, कैप्सिकम भी, ओ नो, बीट रूट, और वो भी इतने चिपके चिपके से। मम्मी, ये बिरयानी है या खिचड़ी? वो भी बीट रूट वाली, यक, कौन खाएगा?
1: गुड़िया, लॉकडाउन में खाना मिल रहा है, शुक्र मनाओ।
2: वाह, ये चावल तो मेरे हिसाब से बने हैं, चबाने की जरूरत नहीं है।
3: लाइए भाई, हम भी तो चखले थोड़ा सा।
0: मम्मी, आप कुछ अच्छा नहीं बना सकती थी?
1: जिसने बनाया है ना, उन्हीं से पूछो तुम।
0: ओह नो, दैट मींस आज कुकिंग फिर पापा ने की है?
1: यस।
2: जिससे जो आता है वही तो करेगा। तेरे बाप से झाड़ू पोछा नहीं लगता, न ये कपड़े धो पाता है, न बर्तन। अब तेरी माँ भला कितना खटेगी? बेचारा खाना बना देता है, वरना मर्दों को सिर्फ हुक्म देने की आदत होती है। हाँ
3: अम्मा, एक तुम ही हो मेरी पार्टी में, बस। ये
0: हाँ।
3: गुड़िया तो विरोधी पार्टी में चली गई लगती है, इससे तो सिर्फ गलतियां निकालना आता है।
0: क्या पापा?
1: अरे आप बस करिए ना गुड़िया बेटा, लाओ मैं तुम्हारे लिए पराठा बना लेती हूँ। आज बेटा।
3: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, विरोधियों और असंतुष्टों को अपनी तरफ करने का अच्छा पैंतरा है।
1: जी हाँ, वो तो है।
3: खाओ खाओ, पराठे खाओ, वजन बढ़ाओ, हमें क्या है। बाद में मत कहने की बाय बाय सूरी, नमस्कार नहीं हो रहा है।
1: तो आगे शुरू, बस करिए। है नहीं तो एक दिन खा लेने से कुछ नहीं होता।
3: अच्छा, सच में?
1: हाँ,
3: तो एक हमारे लिए भी बना दो।
1: अम्मा अम्मा देख लीजिए, अब आप देख रही है ना।
2: हाँ।
1: अपने लाडले से अपना खुद का बनाया खाया नहीं जा रहा है खाना, और आप उन्हीं की साइड ले।
2: अरे बहू, हम सब एक ही साइड में हैं, तू फिकर मत कर। अरे गुड़िया, ए गुड़िया, तू ये बता, तेरी नानी क्या कह रही थी रे?
0: अरे दादी, पता है उनको भूरे की इतनी फिकर होती है, इतनी फिकर होती है ना, कि रोज शाम को जब तक उसके खाने की पूरी रिपोर्ट नहीं ले लेती, उन्हें चैन ही नहीं पड़ता।
2: अच्छा, तो तू उन्हें पूरी खबर देती है?
0: और नहीं तो क्या, भूरे की स्टोरी है ही इतनी वंडरफुल।
2: अच्छा, कैसे? लेकिन
0: आपको पता तो है सारी कहानी नानी।
2: अरे पर मैं भूल जाती हूँ ना रे, तू अपने नानी को जैसे प्यार से सुनाती है ना, वैसे ही जरा प्यार से मुझे भी सुनाना, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है रे।
0: अच्छा तो सुनिए, वो हमारी लाइफ में मेरे कमरे की खिड़की से आया।
2: खिड़की से आया? कमरे की खिड़की से? अरे हम 12वीं मंजिल पर रहते हैं, खिड़की से कैसे भला आया?
0: ओहो दादी, आपको कहानी सुननी है ना?
2: हाँ हाँ, सुना सुना सुना।
0: हाँ, तो खिड़की के नीचे, ठीक नीचे वो जो फ्लाईओवर है ना,
2: हाँ,
0: वहाँ वो रोज शाम को आता है। दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, रात को कहाँ सोता है ये भी नहीं पता।
2: अरे तो तुमने पता लगाने की कोशिश नहीं की?
0: ओहो दादी, लॉकडाउन में नीचे उतरना अलाउड नहीं है, तो फाइंड आउट कैसे करूंगी? हम तो बस खिड़की से ही देखकर खुश हो लेते हैं।
2: अरे इसमें खुश होने की क्या बात है?
1: अम्मा, अम्मा आपको कहानी सुनना है ना, तो बस सुनिए जो कह रही है गुड़िया।
2: हाँ हम तो सुन ही रहे हैं बहू, सुन रहे हैं।
0: हाँ, तो शाम को जब डॉगी फ्लाईओवर पर पहुंच जाता है ना, तो थोड़ी देर में एक पर्सन आता है, वही आपका उजला फरिश्ता।
2: हाँ।
0: और भूरे को कुछ खाने को देता है
2: रोज,
0: और नहीं तो क्या।
2: अच्छा,
0: हम तो डेली देखते हैं और इसी की रिपोर्टिंग तो नानी को करते हैं।
3: अम्मा, इस कुत्ते को पहली दफा गुड़िया और इसकी माँ नहीं देखा था, अब देखा क्या था, मदद की शुरुआत भी इसी ने की थी अम्मा।
0: हाँ, रहता हमसे दूर है, लेकिन है तो हमारे फैमिली मेंबर जैसा ही।
2: हाँ हाँ, कुछ तो बताया था तुम लोगों ने, अब याद नहीं।
3: गुड़िया, याद करो यार, वो रात कैसी थी है?
1: हाँ।
3: हम घंटों खिड़की से देखते रहे, लैंप पोस्ट के आसपास वो कभी इधर उधर चलता, कभी बैठ जाता, कभी खड़ा हो जाता, खड़ा रहता तो न जाने कितनी देर तक एक ही जगह पर खड़ा रहता। लॉकडाउन शुरू हुए अभी, क्यों अभी 3-4 दिन हुए थे।
1: हाँ, बस इसी समय की तो बात है।
3: दहशत फैली हुई थी, ट्रैफिक बहुत कम था, फिर भी कोई स्कूटर वाला निकलता तो कुत्ता उसकी ओर लपकने लगता। अरे साफ लग रहा था कि वो किसी का सहारा ढूंढ रहा है।
1: हाँ ये बात तो है, लेकिन कितने डरावने दिन थे। दुकान बंद, दफ्तर बंद, लोगों का आना जाना बंद, और मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि भाई मेरा किचन कैसे चलेगा। और हाँ देखिए, आप भी तो जानते ही हैं, हम लोग कभी राशन तो जमा करके हमने रखा ही नहीं था, तो चिंता लगी।
0: ओ मम्मा, भूरे की बात बताइए ना।
1: हाँ हाँ, अब खिड़की से देखते देखते अम्मा कई घंटे बीत गए। एक तो ऐसी ये सुनसान जगह, पैदल कोई आता जाता नहीं, और दोनों तरफ इतने बड़े दानवादार टावर, और बीच में इतना चौड़ा 4 लेन वाला फ्लाईओवर, इतने बड़े महानगर के इस

0: फ्लाई ओवर के दोनों तरफ के टावरों में अम्मा 1000-2000 फ्लैट तो होंगे, पर इनके ठीक नाक के नीचे सूखी नदी जैसा फ्लाईओवर, जहां न आदम चात। और पहले तो दिन भर बरसाती नदी की तरह ट्रैफिक से भरा रहता था, पर लॉकडाउन में तो जैसे भूतों का डेरा बन गया है। हमें तो लग रहा था कि ये बेचारा पिद्दू सा तो है, इतनी अकेली जगह पे भटक कर पहुंच गया, और अब उसे यही नहीं पता चल रहा था क्यों जी कि कहाँ जाए, कैसे करें और कैसे बस्ती में पहुँचे।
1: ए बहू, तू भी क्या क्या बोले जा रही है।
0: हाँ अम्मा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरा सोचिए जरा सा, ये 30-30 मंजिला पर्वत खड़े हैं धरती की छाती पर इनके अंदर की दुनिया कोई और ही है। इन्हें जमीन नहीं दिखाई देती, बस काम से काम रखते हैं इसमें रहने वाले।
1: बहू, हम भी तो ऐसे ही टावर में रहते हैं ना।
0: हाँ तो अम्मा, हम भी तो उनके ही जैसे हैं ना, हम भी तो सिमटे रहते हैं।
1: हाँ।
0: पर उस दिन, हाँ अम्मा, उस दिन न जाने कैसे हमारी भी नजर नीचे झुक गई, वरना दोनों तरफ के टावर में लोग ही लोग हैं, लेकिन उन्हें नहीं दिखाई पड़ा, बस हमें दिख गया ये बेचारा।
2: अरे हो सकता है और भी लोगों ने देखा हो, पर हिम्मत ना पड़ी हो कुछ करने की। अब तुम्हें याद है ना, हम भी तो घंटों देखते रह गए थे उसको।
0: हाँ वो तो है, लेकिन हमें भी तो नहीं समझ में आ रहा था ना कि क्या करें, कैसे करें, कैसे इस पिल्ले को पुचकारे, बचाए और कैसे लेके आए। और याद है ना, यहाँ से कैसे हमने ब्रेड का टुकड़ा फेंका था।
2: हाँ।
0: लेकिन वहाँ कैसे पहुँचता, इतनी दूर था।
2: तब अम्मा, हमारी इस गुड़िया ने ही आइडिया दिया। हाँ?
1: क्या, घर लाने का?
2: अरे नहीं अम्मा, घर लाए होते तो मालूम नहीं चलता क्या। अरे जाकर उसे कुछ देने का, और इसने मुझे अकेले जाने भी नहीं दिया, क्यों याद है ना तुम्हें।
0: हाँ, हाँ, हाँ,
2: गुड़िया, उस रात क्या हुआ था याद है?
3: पापा, पापा, पापा।
2: अरे क्या है बेटा, क्या हो गया?
3: पापा जल्दी इधर आइए, जल्दी आइए तो।
2: अरे क्या है बताओ।
3: पापा देखिए ना, वो नीचे बेचारा कितना टायर्ड और हंगरी लग रहा है। आई थिंक ही इज लॉस्ट।
2: हाँ, भूखा और परेशान है लगता, कहीं से भटक के आ गया।
3: यहाँ से देखते रहने से कुछ नहीं होगा, वी मस्ट डू समथिंग।
2: अरे हम क्या कर सकते हैं भाई।
3: पापा क्या हम उस बेचारे पपी को कुछ खाने को दे आए, प्लीज पापा।
2: इस समय लॉकडाउन में?
3: प्लीज पापा।
2: बेटा कर्फ्यू लगा हुआ है, रात का टाइम है, नहीं नहीं नहीं, नहीं जा नहीं सकते।
3: अरे पापा
0: ठीक कह रहे हैं,
3: कुछ नहीं होगा मम्मा, कुछ नहीं होगा। अब देखिए तो, पता नहीं कितने दिन से भूखा है, बेचारा मर जाएगा।
2: देखते हैं, भूखा तो है, सोचने दो।
0: हाँ।
2: अच्छा एक काम करते हैं, अब मैं चला जाता हूँ। हाँ, कुछ दे आऊंगा, ठीक है? और तुम एक काम करो, कुछ ब्रेड व्रेड पड़े हो तो दे दो कुछ।
0: हाँ हाँ मैं बिल्कुल देती हूँ। मैं ऐसा करते हैं कि पानी भी दे ले जाइए और ये बिस्किट भी ले जाइए, है ना।
2: हाँ।
0: और लेकिन रुके रुके रुके, ऐसा करती हूँ मैं रोटी बना के लाती हूँ फटाफट। लीजिए ये सामान, हमने सब थैले में रख दिया, ठीक है? ये देखिए पानी है ना, और रोटी, दोनों चीजें हैं, और ये सामान रख दिया है, उसको पानी वानी पिला दीजिएगा। और मास्क कहाँ है आपका?
2: अरे हाँ लगा लिया है।
0: सैनिटाइजर रखिए भाई।
2: अरे रखा है भाई।
3: अरे रुकिए रुकिए, अरे मुझे भी तो जाना है, मुझे उसे पास से देखना है।
0: तुम वहाँ क्या करोगे?
2: अरे कह रही है तो जाने दो ना यार,
0: कमाल है आप तो।
2: तुम डरोगी तो नहीं ना?
3: नहीं नहीं पापा, बिल्कुल नहीं।
2: चल चल चल,
0: डरोगी नहीं, ये क्या है
3: मम्मा, प्लीज।
2: चलो चलो चलो, लिफ्ट बुलाओ और तुम दरवाजा बंद कर लेना अंदर।
3: हाँ हाँ पापा आइए।
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
2: अच्छा ठीक है, दरवाजा ठीक से बंद करना।
4: कृपया दरवाजा बंद कीजिए।
0: अम्मा ये लीजिए, आप ऐसा करिए दवा ले लीजिए सोने के पहले वाली, और ये हल्दी वाला दूध भी पी लीजिए।
3: बहू क्या बात है, बड़ी हड़बड़ी में दिख रही है, बाहर ये आवाजें कैसी आ रही थी बहू?
0: अरे वो बाप बेटी नीचे गए ना अम्मा। अरे अम्मा आप दूध पी के सो जाइए
3: इतनी रात को। लेकिन क्या हुआ, सब ठीक तो है ना बहू?
0: अरे अम्मा आप फिक्र मत कीजिए, दूध पीजिए और सो जाइए, वो लोग आ जाएंगे थोड़ी देर में।
1: पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता रहता है।
0: मैं सोचती हूँ खिड़की के पास जाकर देखती हूँ, पता नहीं पहुंचे कि नहीं वो लोग। हाँ तो पेड़ बीच में आ रहा है, लगता है अभी पहुंचे नहीं। क्या करूँ, बड़ी चिंता। मैं सोचती फोन कर लेती हूँ।

0: हेलो, अरे तो फोन ही नहीं उठा। हेलो हेलो गुड़िया।
1: हेलो। हाँ मम्मा।
0: तुम लोग अभी तक पहुँचे ही नहीं।
1: अरे मम्मा, उड़कर थोड़ी ना पहुँच जाएंगे, पैदल चल रहे हैं भाई। और पता है, मेन गेट पर सिक्योरिटी वाले बाहर ही नहीं जाने दे रहे थे।
0: क्यों भला?
1: कितना समझाना पड़ा उन्हें, और आज बाहर हवा भी चल रही है।
0: हवा?
1: और सड़क पर बहुत सारे डॉग्स हैं मम्मी, सब इधर से उधर दौड़ रहे हैं। अच्छा आप फोन रखिए, आप खिड़की पर ही है ना?
0: हाँ हाँ मैं यही हूँ।
1: हाँ तो हम पहुँचेंगे तो आपको दिखी जाएंगे, आप बस वेट करिए।
0: अच्छा
2: बहू बहू आ गए वो लोग क्या?
0: अरे अम्मा आप यहाँ आ गई। अम्मा आप फिकर क्यों कर रही हैं, वो लोग आ जाएंगे, आप आराम कीजिए।
2: अरे आराम कहाँ से होगा बहू, इस कोरोना का ऐसा डर बैठ गया है कि सपने भी बुरे बुरे आते हैं। इतना डर तो आजादी मिलने के दिनों में भी नहीं लगा था।
0: आजादी? अम्मा आजादी मिलने पर डर क्यों भला लगा, और मतलब आप तो उधर से आई भी नहीं थी फिर।
2: आजादी मिलने का नहीं, जो मारकाट मची थी उस वक्त उसका डर। हम कहीं से उजड़ कर नहीं आए थे, पर आतंक ऐसा था कि अब हम क्या कहें।
0: अम्मा आपकी उम्र क्या थी उस समय?
2: अरे वही 5-6 साल की रही होंगी। हम बच्चों को घर में बंद कर दिया गया था, सबको डर था कि लड़कियों को उठा ले जाते हैं। पर आज का वक्त ये तो बहुत ही डरावना है, किसी को हम छू नहीं सकते, किसी से मिल नहीं सकते, सैर करने तक हम नहीं जा सकते।
0: अरे अम्मा वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको क्या, आप तो पहले भी कहीं सैर वैर करने नहीं जाती थी भाई।
2: पर डर का साया तो 2400 घंटे है ना, और ऊपर से ये मुआ टीवी मरीजों की गिनती, मरने वालों की गिनती ऐसे बताता रहता है जैसे मौत का खेल चल रहा हो। इतने बीमार पड़ गए, इतने मारे गए।
0: अरे अम्मा अम्मा अम्मा अम्मा आप घबराइए मत, थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा शांत रहिए।
2: हाँ।
0: मैं खिड़की से देखती हूँ कि वो लोग पहुँचे कि नहीं पहुँचे, है ना?
2: हाँ हाँ देख देख,
0: ठीक है,
2: आ जाए तो जरा मुझे बता देना।
0: उठाती हूँ। गुड़िया गुड़िया पहुंच गए तुम लोग? हाँ हाँ मैं खिड़की की तरफ ही आ रही हूँ। हाँ लो मैं आगे खिड़की पर, अब रुको। हेलो, अरे फोन मत बंद करना। हाँ हाँ हाँ मैं देख रही हूँ। अरे पर आवाज तो बेटा फोन पे ही सुनाई देगी ना। अरे अम्मा आप, हाँ लो दादी भी तेरी यहीं आ गई। अम्मा देख रही हैं, ये लोग नीचे ही खड़े हैं, पहुंच गए उस बेजुबान प्राणी के पास।
2: हाँ बहू एक मिनट, मुझे भी तो आगे आने देना, खिड़की के पास आने दे जरा।
0: हाँ अम्मा ये हम कुर्सी यहाँ रख देते हैं, आप यहीं बैठिए, आइए आइए बैठिए। हाँ मैं फोन को भी स्पीकर पर ऑन कर देती हूँ ताकि अम्मा आप लोग को भी ना इन लोगों की आवाज सुनाई दे, सब बातें पता चल जाए। गुड़िया गुड़िया सुन, पहले उसे पानी पिलाओ।
1: हाँ मम्मा। मम्मा आप देख रहे हो?
0: हाँ,
1: हम जो कटोरा लाए थे ना,
0: हाँ,
1: मैंने उसमें पानी डाल दिया। मम्मी देखो ना कैसे पूंछ हिला रहा है, डर भी रहा है। आ गया आ गया, पानी के कटोरे के पास आ गया वो।
2: अरे लग रहा है रोटी भी खिला रहे हैं।
0: हाँ, हाँ, अब पर अम्मा रोटी सूंघ के तो पीछे हट गया।
2: अरे डर रहा होगा ना शायद।
1: मम्मा इसे ना बहुत प्यास लगी है, आप देख रहे हो कितने तेज तेज पानी पी रही है।
0: हाँ, पता नहीं कब से प्यासा था। और गुड़िया मेरा तो मन कर रहा है कि उसे पुचकारूं, प्यार करूं, छोना सा तो है।
3: पुचकारने के लिए जमीन पर उतरना पड़ता है मैडम।
0: हाँ।
3: तुम लोग आसमान में टंगे हो?
1: आसमान नहीं स्वर्ग में बैठे हैं।
2: हाँ, बड़ा स्वर्ग स्वर्ग में बैठे हैं। अरे कैदी हैं, कैदी माचिस की डिबिया में। हाँ।
3: हाँ, खुद को खुशकिस्मत समझो अम्मा, लाखों हाँ। करोड़ों में मिलती है ये माचिस की डिबिया।
0: भाई कमाल है, इतनी दूर खड़े हैं फिर भी चैन नहीं है, बस बहस करा लो इनसे जब चाहो तब।
3: बहस नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।
0: अच्छा पहले आप उस जो बेजुबान प्राणी के लिए गए ना उसकी सेवा करिए, और जरा फिर ये बताइए इतनी देर कहाँ भटक रहे थे आप दोनों? 15 मिनट का रास्ता पूरे 2 घंटे लगाए आप लोगों ने।
3: जमीन आसमान का फर्क यही होता है मैडम, समझे आप? मतलब हम समझा दें आपको जमीन आसमान का मतलब, यहां जहां हम खड़े हैं वहां पहुंचने के 2 बड़े मोड़ हैं
0: जी।
3: जब हम चलने लगे तो पहले सुनसान रास्ता आया, डरावना, अंधेरा, तेज हवा चल रही थी, कागजों, प्लास्टिक और तमाम चीजों का कचरा उड़ने लगा।

0: गलियों से कुत्ते निकलकर भौंकने लगे, छीना झपटी करने लगे, अजीब सा अंधड़ चलने लगा, कूड़े कचरे की बारिश होने लगी। रास्ता था कि खत्म ही नहीं हो रहा था।
1: क्या कह रहे हैं आप, हमें तो कुछ महसूस ही नहीं हुआ, न हवा न बारिश।
0: कह तो रहा हूँ, जमीन पर हालात कुछ और ही होते हैं।
1: अरे क्या ऐसा है बोले जा रहे हैं, आप गुड़िया को फोन दीजिए।
2: अरे बहू क्यों गुस्सा कर रही हो?
1: अरे अम्मा आप रुकिए, गुड़िया गुड़िया ये पापा तुम्हारे क्या कहे जा रहे हैं?
3: हाँ मम्मा, सच में बहुत डरावना एक्सपीरियंस था। सुनिए तो, फिर पहला मोड़ आया तो वहाँ बहुत लोग थे। लोग क्या थे, प्रोसेशन जैसा ही था, एक जुलूस। लोग बच्चे बूढ़े मर्द औरतें सिर पर गठरियां उठाकर चले जा रहे थे, पैदल साइकिलों पे, साइकिल रिक्शा पे, किसी भी तरह बस चले जा रहे थे। रादर दे वर रनिंग, यू नो, रनिंग अवे फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट मामा, टू देयर नेटिव प्लेसेस मामा, दे वर एस्केपिंग, माइग्रेटिंग।
1: अरे ये सब तो टीवी पर आता है, प्रवासी मजदूर अपने घर को लौट रहे हैं और क्या।
3: हाँ, टीवी जैसा ही पर एकदम रियल, लाइव, जिंदा। एक बच्चा सिर पर बैग उठाकर चला जा रहा था।
1: अच्छा,
3: मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो, उसने रिप्लाई ही नहीं दिया, भाग गया। पता है मम्मी, एक अंकल थे बूढ़े से, नंगे पैर मम्मा।
1: अच्छा,
3: और उनके पैरों में चोट लगी थी। पता है मम्मा कितना ब्लड आ रहा था, और पापा को इतना वरिड मैंने कभी नहीं देखा मम्मी।
1: अच्छा,
3: जितने वो उस सीन को देखकर हुए। एंड यू नो
1: क्या,
3: यू नो पापा ने क्या किया?
1: क्या?
3: पापा ने अपने स्लीपर्स उन अंकल को दे दिए मम्मा।
1: अच्छा,
3: अब देख सकते हो पापा उसके बाद नंगे पैर चल रहे हैं।
1: हैं? हाँ हाँ, सच में नंगे पैर ही है। अरे अम्मा, अम्मा देखिए तो जरा सा, इन्होंने तो
2: हुआ?
1: अरे अम्मा ये देखिए तो, इन्होंने स्लीपर अपनी दे दी किसी को।
2: अरे
1: हाँ, इनके पैर दुख रहे होंगे गुड़िया।
2: कोई बात नहीं, कोई बात।
1: अरे गुड़िया गुड़िया, पापा को फोन दो। हेलो हेलो।
0: हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ?
1: अरे आप नंगे पैर हैं, सड़क चुभ रही होगी आपको।
0: नहीं नहीं, आज तो जमीन को फील कर पा रहा हूँ। जानती हो, जिंदगी को इस तरह कभी नहीं देखा। जिंदा बच्चा रहने की इच्छा का परम रूप, चरम रूप, जिजीविषा शायद इसी को कहते होंगे। ये लोग इस अंधेरे वक्त में दिखे, इन्हें एहसास हो गया कि इन्हें कोई नहीं बचाएगा, न साहूकार न सेठ न सरकार, न अमीर न गरीब, खुद ही खुद को बचाना होगा, अपने ही पैरों पर भरोसा करना होगा। ये लोग न जाने कब से चल रहे हैं, और इन लोगों को न जाने कब तक चलते रहना है।
1: ये कौन लोग हैं?
0: यही तो विडंबना है, ये लोग हमारे ही शहरों में थे, हमारे शहर इनके ही बनाए हुए थे, ये शहर इनके चलाए ही चल रहे थे, पर ये आज तक कहीं दिखाई नहीं दिए। हमारे लिए इनका अस्तित्व ही नहीं था, ये हमारी ही तरह

0: भूखों मर जाने का डर है। इन्हें यही डर है कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। इन लोगों ने इसे भोगा है, मैंने नहीं भोगा, सिर्फ करीब से देखा है और तैल गया हूं, अंदर तक तैल गया हूं।
1: सच पापा, बड़ी वियर्ड रात थी वो। ओ माय गॉड, आज भी याद करके गूज़बम्स हो जाते हैं।
2: क्या गूज हो जाते हैं? क्या बक रही है?
0: अरे अम्मा, रोंगटे खड़े होने को अंग्रेजी में गूज बम्प कहते हैं। अरे अम्मा, तुम इसे कभी कभी अपनी भाषा भी समझाया करो यार।
2: हाँ हाँ
1: पापा, लेकिन उस रात पप्पी को जो पानी पिलाने का एक्सपीरियंस था ना, वो मेरी लाइफ का दी बेस्ट एक्सपीरियंस था।
2: हाँ, तभी तो तुमने ढिंढोरा पीट दिया, हाय हाय अनाथ कुत्ता है, मर जाएगा।
1: अरे
2: मर
1: नहीं
2: जाएगा।
1: दादी, मैंने तो बस सोशल मीडिया पर शेयर किया था। मुझे डर लग रहा था कि हम इतनी दूर रोज रोज थोड़ी ना जाएंगे उसे खाना खिलाने।
2: हाँ, तो इसीलिए तो आ गया ना तुम्हारी मदद करने के लिए वो उजला फरिश्ता।
1: सच्ची? और तब से देखो वो पपी, अरे जिसे आप भूरे कहती हैं,
2: हाँ,
1: दिन भर पता नहीं कहाँ रहता है, लेकिन रोज शाम को फ्लाईओवर पर आ जाता है ठीक हमारी खिड़की के नीचे।
2: हाँ।
1: और आपको पता है एक लेन जो खाली रहती है ना, वहीं पर, और वो पर्सन वहीं आकर जॉगिंग करता है। पहले भूरे को खाना खिलाता है, फिर अपना मोबाइल चेक करता है, फिर 10 चक्कर यहाँ से वहाँ लगाता है। और पता है ये भूरे लाल उसके आगे पीछे नाचते कूदते रहते हैं। पता है दादी, बारिश हो जाए ना तो भी इन दोनों की रूटीन नहीं टूटती।
3: अरे अम्मा, जब से ये भूरे को इन्होंने क्या देख लिया, उसकी सेवा क्या करने लगी, बस सोते जागते बस भूरे की कहानी, भूरे की कहानी। दादी

0: हाँ बिल्कुल सही बात है, प्राणी की सेवा करना परम धर्म है, और ये जो इस समय कोरोना का समय चल रहा है इसमें ये सारी चीजें अगर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये बेजुबान जानवर आखिर हमारे ही तो भरोसे हैं, तो ये करना बहुत जरूरी
1: है। बस बस बस शुरू हो गया ये, इनको मौका मिला गुड़िया और तुमने मौका दिया और पापा शुरू हो गए। अच्छा सब लोग बस करो और गुड़िया चलो आओ सब पराठे खा लो, आ जाओ आ जाओ।
2: क्या मम्मी पापा आप भी ना, अरे भूरे तो हमारा हीरो है, आप लोग भी ना। ओ नो देखो ना बातों में तो मैं भूल ही गई, आज भी आ गया होगा अब तक और नानी भी मेरा वेट कर रही होंगी, अरे मुझे उन्हें रिपोर्ट देनी है ना भाई, मैं तो जा रही हूँ खिड़की पर। हेलो हेलो नानी।
3: गुड़िया
2: अरे आप जाग रही हैं?
3: हाँ बेटा तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ।
2: इज इट क्या बात है,
3: जल्दी जल्दी बता क्या वो आया, क्या क्या कर रहा।
2: हाँ हाँ नानी अब सुनिए तो इत्मीनान से, मैं आपको पूरी रिपोर्टिंग दूंगी, पूरी गुड़िया रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम खिड़की, आप बस सुनते जाइए। हाँ तो नानी मैं देख रही हूँ कि उजला फरिश्ता आ चुका है, उसने अपने बैग से कुछ निकाला, अब वो रोटी है या ब्रेड ये तो पता नहीं चल रहा है यहाँ से, लेकिन भूरे लाल भी जल्दी जल्दी खा रहे हैं इतना दिख रहा है। अब खाना खत्म भूरे लाल का और भूरे की मस्ती शुरू। उजला फरिश्ता अब तेजी से सैर कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और ये भूरे लाल कभी उसके आगे कभी उसके पीछे उछल कूद कर रहे हैं। नानी आप बस सुनती चलिए। और ये मैं क्या देख रही हूँ, ओहो भूरे ने उछल कर फरिश्ते की पैंट पकड़ ली और पैंट छुड़ाने की नाकाम कोशिश करते हुए उजला फरिश्ता। ओह मैं कह सकती हूँ नानी कि भूरे बड़ा खुश है, और नानी भूरा खुश है तो मैं खुश हूँ, और मैं खुश हूँ तो नानी आप खुश हैं, है कि नहीं।
3: बिल्कुल खुश।
2: तो नानी आज की रिपोर्टिंग के बाद अब तो आपको नींद आएगी ना।
3: हाँ बेटा जरूर आएगी।
2: तो ठीक है आज आप सो जाइए आराम से इत्मीनान से, मैं कल शाम को आपको फिर कॉल करके रिपोर्ट करूंगी। ओके गुड नाइट नानी, बाय बाय।
0: गुड नाइट गुड़िया, बंद करो बेटा फोन अपना, इधर आओ देखो तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए क्या लेके आए हैं, तुम्हें खिचड़ी टाइप बिरयानी अच्छी नहीं लगी थी ना उसे?
2: हाँ।
0: तो जानती हूँ मैंने क्या किया?
2: क्या बताया पापा?
0: दूध लाया।
2: हाँ?
0: दूध तो मिल रहा है लॉकडाउन में,
4: लेकिन मुझे दूध अच्छा नहीं लगता
0: मालूम है मुझे, इसीलिए मैंने उसका छेना बनाया।
2: क्या बात है।
0: और छेने के बाद उसके संदेश बनाए।
2: इज इट
0: बंगाली संदेश?
2: ओ वाह पापा मेरे मुंह में पानी आ रहा है।
0: तो मीठे मीठे संदेश खाओ, और हाँ अपनी मम्मी को भी खिला देना, हमेशा कहती ना कि यही खाते रहते हैं हमेशा।
2: यू आर ऑसम, यू आर ग्रेट।

अभी आप सुन रहे और ध्येय अनूप सेठी का लिखा नाटक जमीन आसमान। इसमें भाग लेने वाले कलाकारों का पात्र सहित परिचय इस प्रकार था: माँ रेणु चतुर्वेदी, गुड़िया आकांक्षा सिंह, दादी ममता सिंह, नानी अनुश्री पाठक और पापा अमरकांत दुबे। संगीत संयोजन और तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी, निर्देशक अमरकांत दुबे,

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध